जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप सुन रहे हैं इट हैपेंस में, और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग के कुछ बहुत ही प्यारे और जिंदगी से जुड़े हुए गाने. दूसरों के फिल्टर वाले चेहरे को देखकर हमारा दिल अक्सर करता है कि यार हमारी लाइफ भी ऐसी होती या हमारी जिंदगी भी ऐसी होती, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हम आपसे कह रहे थे. लेकिन इस बात को बहुत डीपली सोचने और समझने की जरूरत है कि हर चमकती हुई चीज सोना तो नहीं होती है ना. हर चेहरे के पीछे की मुस्कुराहट सच्ची तो नहीं होती है. उस मुस्कुराहट के पीछे का जो स्ट्रेस है या उस मुस्कुराहट के पीछे की जो कहानी है वो डिफरेंट हो सकती है ना आपकी सोच से, मानते हैं ना. इसीलिए कहती हूँ कि यार अपनी लाइफ को ना दूसरे की लाइफ से कंपेयर करना बंद कीजिए. अपने पार्टनर में आप हजारों गलती निकालते हैं. क्या पता सामने वाला जो बड़ा हंस हंस के फोटोज डाल रहा है उसके बाद उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो. हमें नहीं पता आज कल वो जिंदगी नहीं है कि हम दूसरे की लाइफ के बारे में परफेक्टली सब कुछ जानते हैं. तो दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लड़ाइए, है ना. आइए इसी बात पर एक अगला ट्रैक सुनते हैं. अपने फोन को साइड में रखिए और अपनी खूबसूरत जिंदगी का जश्न मनाइए. स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रह्मानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस.

क्या हो गए, हमने मुस्कुराना और बचपना करना ही छोड़ दिया है। हर जगह हमें मैच्योर दिखना है, ऑफिस में सीरियस फेस, पार्टी में सलीके से बात करना और हर बात पर बहुत नाप तौल कर रिएक्ट करना। थक नहीं जाते आप इस जबरदस्ती की समझदारी से? कभी कभी ना बिना किसी वजह के जोर से हंसना, बारिश देखकर भीगने का मन करना या कार्टून देखकर खुश हो जाना बेहद जरूरी है। अगर कोई आपको देखकर कहे कि बच्चे हो क्या, तो पलटकर मुस्कुराइए और कहिए, हाँ भाई, समझदारी दुनिया के लिए है और बचपना मेरे लिए है ना, और आपके और मेरे बचपने के नाम। ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्पानी 107.01 एम पर।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is

बढ़ना तो बस कैलेंडर का खेल है, उम्र का बढ़ना तो बस कैलेंडर का खेल है। दिल अगर बच्चा रहे तो जिंदगी का हर लम्हा फेयर है। दिल अगर बच्चा रहे तो जिंदगी का हर लम्हा फेयर है। वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। यू नो, बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। यस ऑफ कोर्स, एज इज जस्ट अ नंबर। आज के टाइम पर तो ये सच है यार। अच्छे अच्छे से फिल्टर्स हैं, अच्छे अच्छे से पोज हैं, आप अपने सेल्फी को भी खूबसूरत बना लेते हैं, एज कितनी भी हो। तो जब सेल्फी को खूबसूरत बना सकते हैं तो दिल से भी तो जवान महसूस कीजिए ना। बल्कि होता इसका उल्टा है। भरी जवानी में लोग ना अपने आप को आजकल बहुत मैच्योर फील करने लगते हैं। मतलब बुढ़ापा कहूंगी कि अंदर से आ जाता है यार, और वही नहीं करना है ना। हमें अपने चेहरे को भी मुस्कुराना सिखाना है जैसे कि हम मुस्कुराते हैं। और हमारी और आपकी मुस्कुराहट के नाम ये अगला ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस। जी आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। अपने अंदर के बच्चे को आजाद कीजिए, मुस्कुराइए और थिरकिए इस गाने पर।

जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना किसी बात के आपका मूड खराब करने की कोशिश करते हैं, या ये कहूँ ताकत रखते हैं। चाहे वो ट्रैफिक में हॉर्न बजाने वाला बंदा हो या कोई कड़वा कमेंट करने वाला कलीग हो, उन्हें आपके दिमाग का स्पेस यूज ही मत करने दीजिए ना। मतलब मैं मानती हूँ कि थोड़ी देर के लिए तो खून खौल जाता है एकदम, लेकिन यार थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स करिए। मतलब समझ जाइए ना कि ये बंदा तो है ही ऐसा, इसके साथ अपना मूड खराब करना या इसके साथ जाकर के भिड़ना अपने सर पर बवाल लेना है। और हम इतनी सी बात के लिए, ये जो इंसान ऐसा है ये ऐसा ही रहने वाला है, इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ सकते। तो वही है ना कि बोलिए छोड़ो, है ना, ओम इग्नोराई नमः, और इट हैपेंस, है ना, बोल करके आप आगे निकल जाइए। एक और ट्रैक सुधाक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम पर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ठप्पन सुन रहे हैं आप सदाक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम सब लाइफ में खुश रहना चाहते हैं ना, तो खुश रहने का एक ही सीक्रेट है कि बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कीजिए और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए। रास्ते में कोई मुस्कुराता हुआ बच्चा दिख जाए या आपकी पसंदीदा चॉकलेट मिल जाए, बस उस वक्त वही आपकी जीत होनी चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा भी तो है, उलझनों को हवा में उड़ा कर तो देखो, जिंदगी कितनी हसीन है, जरा मुस्कुरा कर तो देखो। तो चलिए, अपनी स्माइल को कम मत होने दीजिए और आपके नाम, आपकी स्माइल के नाम फिलहाल हम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और सदाक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

0: सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है आज के सफर को, यानी कि हमारे इटहैपेंस को यहाँ पर वाइंड अप करने का। तो जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में चाहे जो भी रायता फैले, पैनिक करने का नहीं, बस मुस्कुराते रहिए और जोर से बोलिए इट हैपेंस और मजे से आगे बढ़ जाइए। बस अपनी लाइफ को जीते रहिए, इंजॉय करते रहिए। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी इसी वक्त इसी स्टेशन पर, और हमारे साथ होंगे कुछ फ्रेश और बेहतरीन गाने और हमारी और आपकी मॉर्निंग वाली कुछ चिटचैट। आज के सफर से अब दीजिए विदा, नमस्कार। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।
1: Groove.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

बिलियन डॉलर का निवेश करी है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री दे टॉप एक्टर्स विचो एक हैगे ने शाहिद कपूर, जो इन दिन अपनी आने वाली फिल्म ओ रोमियो दे प्रमोशन विच लगे हुए ने। इस फिल्म विच शाहिद कपूर नू तृप्ति टिमरे दे नाल लीड रोल दे विच देखा जाएगा। ओ रोमियो की जो गल करिए तो ओ रोमियो की रिलीज तो पहला मैं सोचा कि क्यों ना थानू कुछ शाहिद कपूर दियां चुनिंदा उन्हां फिल्मां बारे दसां जो बेस्ट फिल्मां रही जिन्हां ने निर्मातावां प्रोड्यूसर्स दी चांदी करती सी, उन्हां नू बहुत ज्यादा कमाई करवाई सी। यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचते होंगे कि शाहिद कपूर नू कास्ट करके असी सही फैसला लिया है ना। दसा उन्होंने फिल्मों बारे दस दिया, पर पहला सुनो एक गीत।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 संदेश अलग दिनाल से बने हुए। जदों जदों इंडिया दियां बेस्ट फिल्मां दी गल होगी तां नाम हैगा है जिहड़ा ओह पद्मावत दा तां जरूर आऊगा, क्योंकि पद्मावत नो डाउट बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है। जिन्नी प्रेज इस दे विच रणवीर सिंह दी नैगेटिव रोल दे विच होई सी, उन्नी ही प्रेज इस दे विच एक शांत जे महाराजा दे रूप दे विच शाहिद कपूर दी भी होई सी। जी हां, संजय लीला भंसाली दे निर्देशन विच बनी सी फिल्म पद्मावत। ते शाहिद कपूर दी फिल्म इह जिहड़ी पद्मावत है उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 550 करोड़ तो उपर का बिजनेस किया। शाहिद कपूर के हुण तक के करियर की सब तो ज्यादा कमाई करन वाली फिल्म बन गई सी। बहुत ज्यादा प्यार मिलिया सी इस किरदार नूं भी शाहिद दे नूं।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मानी वंसर हुआ ने जी आर चे संदेश अलग दिन आज से बने हुए लव स्टोरीज दी रहिंदी दुनिया तक जदों जदों गल होगी जदों जदों गल होगी ना कि कहा जाऊगा कि लव स्टोरी बहुत सोहनी है कि उदो उदा नाम कबीर सिंह दा नाम है अजिहा नहीं हो सकना क्योंकि कबीर सिंह बहुत ही शानदार बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है। ते रणबीर सिंह रणबीर नहीं नहीं नहीं नहीं शाहिद शाहिद कपूर दी बेस्ट मूवीज दे विचों एक है कबीर सिंह। ता शाहिद कपूर दी रोमांटिक ड्रामा हैगी है जिहड़ी कबीर सिंह इसने दुनिया भर दे विच बहुत शानदार कमाई कीती सी 377 करोड़ तो पार की कमाई की सी। इस मूवी का निर्देशन संदीप रेड़ीवांगा ने किया जो हुण दोबारा तो नाल नजर आ रहे हैं ओरोमियो शाहिद कपूर दे शाहिद कपूर दी ओरोमियो नू डायरेक्ट भी संदीप रेड़ीवांगा ने ही किया। दोनों जदों इकट्ठे हुंदे ने तां मूवी हिट होने की गारंटी है हो जाती है।

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक मूवी आई सी ना रोबोट वाली रजनीकांत थी, याद आया ना, ऐश्वर्या राय दे नाल बहुत ज्यादा सोहनी सी। उस तो बाद उसका सैकेंड पार्ट भी आया सी, उसनू इना प्यार नहीं मिल सकिया सी। पर रोबोट वालियां फिल्मां हुंदियां ने जिहड़ियां ओह कमाल कर जाणो तां कमाल दी गल हुंदी ना, जिवें रजनीकांत कमाल कर गए सी, शाहिद कपूर भी कमाल कर गए सी। तेरी बातों में उलझा जी याद विच बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है। इस दे विच रोबोट शाहिद कपूर ने ही कृति सैनन बनी सी, ते इन्नी ज्यादा सोहनी रोमेंटिक कॉमेडी सी, जिसका म्यूजिक भी शानदार, डांस स्टेप्स हले तक वायरल, म्यूजिक भी शानदार, डायलॉग भी शानदार, एक्टर्स भी शानदार, कहानी भी शानदार, ताही ता इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की सी। वधिया फिल्मों के विच गिनी जाती है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज online au.lotusfx.com app aaj hi visit kare.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल सिपाणे होयो। अगला जेड़ा नाम आंदा हैगा ओह है जी आर राजकुमार दा। इसका एक गीत आया सी साड़ी के फॉल्सा, वो अज तक सुनिया जाता है, लोग सब बहुत पसंद करते हैं, डांस होंगे ने अज भी ओ कहानी एवरेज सी मतलब ठीक ठाक फिल्मों की लिस्ट विच इसनू रखदे आ। सोनाक्षी सिन्हा सी लीड रोल दे विच इस दे विच ऑपोजिट शाहिद कपूर ते। इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ तो पार दा बिजनेस इसने कर लिया सी, पर मेरे परसनल एक्सपीरियंस दे नाल मैनूं एवरेज मूवी लगी सी, बट हां शाहिद दी एक्टिंग इस दे विच भी बाकमाल सी।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसौनी वंसन वाले ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक बड़े साल पहला मूवी आई सी जिस विच बहुत सारे कलाकार सी, शाहिदा सी, शाहिद की गल कर रहे आपां, शाहिद दे नाल नाल आलिया भट्ट भी सी, दिलजीत दोसांझ भी सी, करीना कपूर भी सी। बिल्कुल सही तुसी गैस कीता। गल कर रही हां मैं फिल्म उड़ता पंजाब ती। उड़ता पंजाब दे विच ना शाहिद कपूर दा किरदार हैगा जिहड़ा ओह टोटली डिफरेंट सी। ड्रग एडिक्ट एक नौजवान बनिया सीगा ओह ते बने सी, बड़ा वधिया एक्टिंग कीती सी, नो डाउट, बहुत ज्यादा सोहनी एक्टिंग। इस दे विच चारा ही किरदारा ने बहुत सोहनी कीती सी ते स्टोरी भी इसकी लाजवाब हैगी है। ते ताही ता ये उड़ता पंजाब हैगी है जिहड़ी ओह 100 करोड़ दे नेड़े तक दे कलैक्शन दे विच पहुंच गई सी। कई साल पहलां दी गल कर रही हां मैं, तकरीबन एक दहाका हो गया है। इस फिल्म विच शाहिद ने तेजिंदर सिंह उर्फ गबरू का किरदार निभाया सीगा।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आपके संदेश अलग दिन से बने हुए हूं। एक फिल्म आई सी कश्मीर दी, बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म, उस दे विच भी शाहिद कपूर छा गए सी, हालांकि नाल उस दे विच तब्बू सी, तब्बू ने भी बहुत ज्यादा वधिया रोल किया सी। तब्बू दी भी हुण तक इस फिल्म दे विच तारीफ हुंदी हैगी है। गल कर रही है मैं हैदर दी जी। हां, उड़ता पंजाब तो बाद ना शाहिद कपूर दी हैदर 6वें स्थान ते रही। इस मूवी विच शाहिद नाल तब्बू अते के मैनन लीड रोल दे विच हैगी। इस फिल्म ने दुनिया भर दे विच बॉक्स ऑफिस ते 100 करोड़ दे नेड़ तेड़, नहीं 80 करोड़ दे नेड़ तेड़ दी कमाई कीती सी। ते इस नूं बेस्ट फिल्मां दे विच मैं तां कंसीडर करूंगी क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा सोहनी है।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं

देखो मेरा हो चुका है तो तुहाड़े तों इजाजत लैण दा, पर जांदे जांदे हुण गल रोमियो दी तां कर लईए जिथों शुरुआत कीती सी। जी हां, विशाल भारद्वाज दे निर्देशन विच बनी हैगी है, फिल्म प्रोड्यूसर हैगे उसे, ओह निर्देशन है, निर्देशक हैगे जिहड़े ओह विशाल भारद्वाज है। ओह रोमियो विच शाहिद कपूर नूं लीड रोल दे विच देखिया जाऊगा। हुण देखना यह होवेगा कि ओह रोमियो शाहिद कपूर दे करियर दी सब तों ज्यादा कमाई करन वाली फिल्म बन पाउंदी है या नहीं। तुहानूं की लगदा है, तुसीं जरूर दसो। बाकी जिहड़ियां मैं फिल्मां दी गल कीती हैगी है शाहिद कपूर दीआं, ओदे बारे थोड़ा की कहना है, वह भी जरूर दसो, है ना। तो फटाफट दे नाल तुसी साडे नाल जुड़ना शुरू करो। तो एक मैं एक चीज हुण जे तुसी मेरी गल ते फड़ी होवे तां तुसी जरूर दस्यो कि मैं एक किसी डायरेक्टर दा नाम गलत लिया हैगा है कि वह रोमियो दे विच शाहिद कपूर दे नाल काम करनगे। तुसी जरूर दस्यो, मेरी गलती फड़ो ते साडे नाल गल्लां करो। बाकी कल करदे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: ਹੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Hello.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: ओके तुम आ रही हो मैं जा रहा हूं लगता रूम में रह गया

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं थोड़ी सी देरी के लिए, और ये 5 मिनट की देरी हम पूरी तरह से पूरी करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बता देंगे इसकी कुछ चीज़ें हो रही हैं, कभी टेक्निकल खराबी, लेकिन कभी ये मौसम ही हमें आपसे मिलने से रोक लेता है। बट डोंट वरी, आपकी आरजे निव्या यहाँ आ गई है और अब आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा प्रोग्राम भी वो लेकर आई है। सो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है हमेशा बहुत ही अच्छी चीज़ के साथ, बहुत ही हेल्दी चीज़ के साथ। एंड व्हेन आई से हेल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी रिचुअल जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, शुरू होने से पहले, और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। कैसे हम बाहर के केओस को अपने दिल तक, अपने दिमाग तक पहुँचने से रोक सकते हैं, कैसे हम अपने काम को बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम अपने डिसीजंस को एकदम कामली ले सकते हैं विदाउट एनी पुराने किसी किसी काम के बैगेज के एवज में। सो ये सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, इट्स गोना वर्क फॉर यू एंड इट्स गोना डू वंडर्स। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते और बिना देर किए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। प्रोग्राम की शुरुआत होती है हमेशा बहुत ही मज़ेदार से गानों के साथ, तो यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो है मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। गाने का नाम है तेरा रास्ता छोड़ू ना, छोड़ू ना तेरा रास्ता छोड़ू ना। जी हाँ, और इसी के साथ हम आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना लेकर आएंगे, लेकिन पहले तेरा रास्ता छोड़ू ना हम आपके लिए प्ले करेंगे। और ये है चेन्नई एक्सप्रेस का गाना। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं सीधा, ऑफ कोर्स मौसम की बात कर लेते हैं भाई। मौसम की बात करना जरूरी है और मौसम के क्या क्या हो रहा है वो भी आपको बताना जरूरी है। आज क्या हो रहा है, कल और परसों क्या होगा, यानी कि आज के साथ अगले 2 दिन क्या होने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, लेकिन अभी की अगर बात करें तो 18.2 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर, और फील आपको हो रहा है 18.5 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, दिन की बात तो है ये, लेकिन रात की अगर बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप रात के तापमान में भी देख पाएंगे, और 50% चांसेस यहाँ पर बारिश के हैं जो कि हो रही है, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है, कहीं कहीं पर बहुत ही थोड़ी हो रही है, कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और कहीं कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। सो बारिश की सिचुएशन जो है वो ऐसी बनी हुई है, और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये रात को भी मुझे दिख रही है, कभी मुझे 19%, 9%, 11% जो है वो होती हुई बारिश दिख रही है, बट अगेन ये थोड़ी थोड़ी और कुछ जगहों पर ही होगी। इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, जी हाँ, नॉट जस्ट फेयर बट एक्सीलेंट। और अब आज के साथ अगले 2 दिन की बात कर लेते हैं, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को। तो वेडनेसडे को 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने के चांसेस हैं, विद 40% चांसेस, मतलब 40% चांसेस बारिश के हैं, 1 mm तक बारिश हो सकती है और 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है। वहीं अगर थर्सडे की बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, 10% चांसेस ऑफ बारिश, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, और उस दिन आपको जो है वो सूरज के अच्छे से खिलने के चांसेस जो है मुझे नजर आ रहे हैं, और उसके बाद में अगले 2 दिन अच्छे से खिलता हुआ सूरज विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन जो है वो देख पा रही हूँ। सो या ये है मौसम का हाल, और

के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और खूबसूरत सा गाना आपके लिए मैं प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और इस गाने का नाम है जानिब। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ड्यूएट है ये। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

चोरी चोरी चुप किसे आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा।

0: Queensland di navi sarkar Brisbane.
1: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
3: बिल्कुल. खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी.
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
6: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन
7: जी हाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. तो दोस्तों शो तो यहाँ पर शुरू हो गया है, प्रोग्राम शुरू हो गया. अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए क्योंकि आपकी फरमाइशों से ही तो जान हमारे प्रोग्राम में आती है. एकदम बवाल हमारा प्रोग्राम बन जाता है बट ऑल इन अ गुड सेंस. जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको अगर हमारे प्रोग्राम में अपना कोई फेवरेट गाना फरमाइश करना है जो आपको बहुत ही पसंद है या फिर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हो कोई खूबसूरत सा गाना उनकी तारीफ में उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हो, यू कैन डू दैट टू हियर. जी हाँ, तो जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए. नंबर है +91 8288 8871 701. आई रिपीट +91 8288 8871 701. तो बस फिर जल्दी से आ जाइए और अपनी फरमाइश और डेडिकेटेड सॉन्ग्स को लेकर यहाँ पहुंच जाइए. जब तक आप कर रहे हो ये, हम आपके लिए एक और बहुत ही मजेदार सा गाना प्ले करने वाले हैं.
8: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

whatever.

0: नजर है।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपको बताते हैं एक और बहुत ही गजब की चीज होने वाली है, जिसके लिए इंटरनेट जस्ट वेंट क्रेजी। जी हाँ, 17 घंटे पहले मार्वल का ऑफिशियल पेज डूम्स डे की पिक्चर के साथ, डॉक्टर डूम की बैक प्रोफाइल के साथ एक जो है वो जो है एक चीज शेयर करता है, और वो लिखा होता है उसके कैप्शन में, दिसंबर 18th इज अ डूम्स डे एंड आई डोंट वांट इट टू बी अ डूम्स डे बिकॉज लेट्स बी रियल, डूम्स डे इज नॉट अ गुड थिंग, बट इफ इट्स अबाउट मार्वल्स डूम्स डे देन वी आर इन फॉर इट। जी हाँ, सो इंटरनेट वेंट क्रेजी। जी हाँ, और ये वही है जो आप सोच रहे हो। सो मार्वल की जो नई मूवी आ रही है डूम्स डे, जिसमें कि आयरन मैन वाले जी हाँ एक्टर आपको नजर आने वाले हैं डॉक्टर डूम के तौर पर, वो पिक्चर हो रही है रिलीज 13th ऑफ नहीं बल्कि 18th ऑफ दिसंबर। आप लोग बोलोगे कि 18th ऑफ दिसंबर में रिलीज हो रही है तो उसके बारे में अभी से बात क्यों कर रहे हो आप लोग? वेल, वो इसलिए क्योंकि कुछ सेलेक्ट थिएटर्स में इसकी बुकिंग्स अभी से शुरू हो गई है। मतलब एक पर्टिकुलर सा जो है वो टिकट प्लेटफॉर्म है उस पे इसकी टिकट्स की सेल अभी से ही शुरू हो गई है एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी। कुछ बुक कर पा रहे हैं वो क्रेजी हो गए क्योंकि उनकी बुकिंग्स हो गई, कुछ नहीं कर पा रहे इसलिए वो क्रेजी हो गए कि उनकी हो ही नहीं रही है बुकिंग। सो आप मुझे बताइए, क्या आप भी मार्वल यूनिवर्स के बहुत ज्यादा बड़े फैन हो? और अगर आप हो तो क्या आप भी डूम्स डे का इंतजार कर रहे हो? वेल, नॉट द रियल डूम्स डे बट द मार्वल्स डूम्स डे, बिकॉज डॉक्टर डूम रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो आपको आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में एंटरटेन करने वाले हैं। और आपको याद होगा कि जब मार्वल ने लास्ट ईयर इसके बारे में की थी अनाउंसमेंट, पीपल वेंट क्रेजी। लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर डूम पता नहीं कौन होने वाला है, लेकिन एकदम से जब उन्होंने अपना मखोटा उतारा और वहां पर दिखते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि आप आयरन मैन के तौर पर देख चुके हो पहले ही, People went crazy. Yeah, the internet went crazy. The whole world went crazy. And yeah, it's gonna come this year only. 13th of, नहीं बल्कि 18th of December. क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 13th of December को आने वाली है, but मैं आपको बता दूं कि it's not 13, it's 18th of December. So check out कीजिए कहां पर हो रहा है इसकी tickets का sale और देखिए कि आपकी book हो जाती है या नहीं, या फिर आप wait करना चाहते हैं, आप बोलोगे कि नहीं अभी क्या book कर लेना, ठीक है Marvel की तो movie है। आप कौन से वाले ग्रुप में आते हैं, क्या आप बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, या आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मूवी तो है, जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और मूवी गाना आप सबके लिए।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
11: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है. इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
12: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
12: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की बात भी हो रही है. बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स की बात हो रही है, बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी स्टार की बात हो रही है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट शकीरा. अब शकीरा की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया. वेल ऑफकोर्स उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन उनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शकीरा चेंज ही नहीं हो रही है. मतलब शकीरा बूढ़ी हो ही नहीं रही है, मतलब शी इज नॉट एजिंग एट ऑल. जी हाँ, ये फाउंटेन ऑफ यूथ कहां से मिला है शकीरा को? अब आप सबको तो पता ही है, हम सबको भी पता है कि हर पूरी जिंदगी हसीन रहने की और जवान रहने की हसरत जो है वो हम सबके दिल में है, लेकिन हम सब ये कर नहीं पाते हैं, राइट? मतलब क्योंकि वी ऑल नो कि साइंस जो है ये अलाउ नहीं करती है. हम धीरे धीरे जो है वो एज्ड होते जाते हैं और इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. और आप कितना भी फाइट करने की कोशिश करो इससे, यू कांट चेंज द फैक्ट दैट यू आर गना एज और आई एम गना एज. और इसमें बिल्कुल सच्चाई है. बट द थिंग इज कि कुछ कुछ लोग हैं जिनको देख के लगता है कि नहीं, उनको तो फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया है. उनकी मतलब जो जिंदगी है, उनकी जो उम्र है, वो एक जगह पर ठहर कर रह गई है और अब जो है वो आगे उनकी एज बढ़ ही नहीं रही है. तो शकीरा की बात भी इसीलिए हो रही है क्योंकि शकीरा ने हाफ टाइम शो में परफॉर्म किया फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के हाफ टाइम शो में. एंड पीपल वर गोइंग क्रेजी, नॉट बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस, बिकॉज परफॉर्मेंस वर ऑलवेज ग्रेट. और शकीरा इज अ वेरी गुड परफॉर्मर एंड वी ऑल ऑल नो दैट, बट द थिंग इज कि शी इज स्टिल लुकिंग लाइक दैट. यू नो व्हाट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर की बात जो है वो मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है, बिकॉज ही वॉज लाइक, यू नो व्हाट, जब मैं पैदा हुआ था तो शकीरा ऐसी दिख रही थी, मतलब शकीरा जैसी अभी दिख रही है वैसी ही ऑलमोस्ट दिख रही थी. फिर मैं टीनेजर हुआ तब भी शकीरा ऐसी दिख रही थी, और अब जब मैं लिटरली एडल्ट हो गया हूं तब भी शकीरा ऐसे दिख रही है. मतलब शी इज 49 बट शी डज नॉट लुक 49 एट ऑल. नाउ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फाउंटेन ऑफ यूथ शी फाउंड और शी हैज, बट डेफिनेटली जो भी है शकीरा, यू शुड शेयर इट विद अस, बिकॉज अच्छी चीजें शेयर कर कर और भी बढ़ जाती हैं. शी इज लाइक नॉट दिस वन डूड, नॉट दिस वन. जी हाँ, सो या आप मुझे बताइए कि आप भी शकीरा की जवानी को देखकर ऐसा फील कर रहे हैं कि कहाँ है शकीरा का बुढ़ापा, मतलब क्यों नहीं एज बढ़ रही है शकीरा की, और हम सब की बढ़ रही है, लाइक वी आर गेटिंग एज, वी आर एजिंग बट शी इज नॉट एजिंग एट ऑल, वाई. सो या यू टेल मी अबाउट दैट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, ये नेचर भी अजूबों से भरा हुआ है, यूनिक चीजों से भरा हुआ है। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, आर वी टॉकिंग अबाउट सम यू नो मतलब मॉन्स्ट्रस मूवी और समथिंग, आर वी टॉकिंग अबाउट अ हॉलीवुड मूवी, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। बट देन इट काइंड ऑफ मेक सेंस बिकॉज इट इज नेचर एंड नेचर कैन डू एनीथिंग एंड नेचर इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। जी हाँ, सो एक जाइंट जेलीफिश के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है जिसके टेंटेकल्स जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं अप टू 120 फीट लॉन्ग, और ये यूएस के बीचेस पर जो है वो नजर आ रही है। ये लिटरली जो है वो ऑफिशियल्स को वॉर्न यहां पर करना पड़ रहा है लोगों को कि ओके ठीक है, गर्मी हो रही है और आप सब बीचेस पर जाना चाहते हो, दैट इज वन थिंग, बट देयर इज अ जेलीफिश जो कि इतनी बड़ी हो सकती है। इट्स नॉट अ जेलीफिश, इट्स अ जायंट जेलीफिश, जैसे कि मैंने आपको बताया।

उसके टेंटेकल्स जो हैं, दे कैन स्ट्रेच अप टू 120 फीट. यू आर लाइक यू के निविया शर्मा. नाउ वी नो वाई यू वर सेइंग कि ये एक मॉन्स्ट्रस हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लग रही है. नाउ ये क्रीचर जो है वो स्पॉट किया गया है फ्रॉम मैनिशुटा टू नॉर्थ शोर, उसके केप कोड और बहुत सारी और जगहों पर जो है इसको जो है वो स्पॉट किया गया है. इनफैक्ट जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये कि ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि ये क्रीचर जो है वो मरने के बाद भी, जी हाँ, 25 डेज तक स्टिंग कर सकता है. और इसकी स्टिंग जो है वो क्या क्या नहीं कर सकती, मतलब एक खतरनाक सी जेली जो कि छोटी सी होती है वो भी एक इंसान को मारने में कैपेबल है. सो आप ये सोचिए कि एक जेलीफिश जो कि ऑलरेडी जाइंट है, जिसके टेंटेकल्स जो हैं वो 120 फुट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, वो वाली जेलीफिश क्या किया नहीं कर सकती है. और 25 दिन, मतलब आपको लगेगा कि ओ ये तो जिंदा भी नहीं है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसे डरने की जरूरत नहीं है. बट देन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये मरने के बाद भी 25 दिन तक स्टिंग कर सकती है. एलोजी, आप लोग बोलोगे कि वाह वाह वाह वाह वाह, बात तो सही है, बात तो सही भी है और खतरनाक भी है. सो अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता था इससे पहले कि इतनी बड़ी जेलीफिशेस भी हो सकती हैं. बट या, इट इज व्हाट इट इज. जी हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गॉडज़िला, बट वी आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट गॉडज़िला जेलीफिश. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
8: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
7: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
8: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार शेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। क्या हो रहा है न्यूज में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, और क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट ऑल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया से, भारत से, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले एक बहुत ही दुखद खबर जो कि सिक्किम से है। सिक्किम के सुरंग में एक हादसा हुआ है, वहां से 8 शव बरामद हुए हैं और 25 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। जी हाँ, सिक्किम के नामची जिले के समरुंडुंग में निर्माणधीन सुरंग में हुए हादसे के बाद अब तक 8 शव बरामद किए गए हैं। ये सुरंग NHPC की तीस्ता जल विद्युत परियोजना यानी कि छठे चरण का हिस्सा है। नामची की जिला उपायुक्त अनुपा तमलिंग ने हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए NDRF और अग्निशमन विभाग की टीमें अभियान चला रही हैं। दरअसल यह हादसा सोमवार को हुए भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के बाद हुआ, जब सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और अंदर जाने वाला रास्ता मलबे से बंद हो गया। प्रशासन के मुताबिक सुरंग में गैस रिसाव के कारण बचाव अभियान में कई चुनौतियां आ रही हैं। जिला उपायुक्त ने BBC न्यूज हिंदी को बताया कि संबंधित विभागों से मिली जानकारी के अनुसार सुरंग के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव दल लगातार अंदर फंसे श्रमिकों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है, अब जरा बात करते हैं एक ऐसे प्रोटेस्ट के बारे में जो कि चल रहा था पहले बहुत ही शांति से, फिर उनका मार्च होता है संसद के लिए और फिर उसके बाद होता है लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज के बाद पत्थर भी फेंके जाते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भारत की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। वहां पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया था नीट एग्जाम लीकेज के खिलाफ, जिसमें वो चाह रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, और इसलिए वो संसद मार्च उन्होंने किया। लेकिन वो क्या हो गया, आइए जरा उसी के बारे में आपको बताते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के सोमवार को निकाले गए संसद मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच में भी चिंता जताई है। जी हाँ, संगठन ने भारतीय अधिकारियों से पुलिस कार्रवाई की जांच कराने और प्रदर्शनकारियों के अधिकारियों की रक्षा करने की अपील की है। ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लाठियों और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोपों की तुरंत जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बल संयम बरते और लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार मिले। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात करते हैं नेतन्याहू जी के बारे में। जी हाँ, सो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के ममदानी के बयान के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप का यह बयान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना पर उनका कार्यालय अभी भी विचार कर रहा है। इसके बाद ट्रंप ने सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में रहते हुए किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वह उस ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों की जान ली और पिछले 47 वर्षों से अमेरिकी सैनिकों समेत कई अन्य लोगों की हत्या करता आ रहा है। उन्होंने आगे लिखा, गिरफ्तार तो उन लोगों को किया जाना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के ऐसे दौर में पहुंचाया। ये मामला पहले के राष्ट्रपतियों को कई साल पहले ही संभाल लेना चाहिए था। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 2024 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में युद्ध अपराध के आरोप भी लगाए गए थे।

जी हाँ दोस्तों, इसके साथ खबरों की बात हो रही है और मौसम विभाग से भी अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट है इंडिया के लिए। जी हाँ, भारत की बात कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स, जब भी मौसम खराब होता है और ऐसे बारिश वाला होता है तो उसके बाद फ्लाइट्स पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ऐसे में अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं भारत की ओर ऑस्ट्रेलिया से, आपके रिलेटिव्स या आपके नियर एंड डियर वंस, तो आपको ये जानना जरूरी है। सो मौसम विभाग का अलर्ट है कि 26 जुलाई तक भारी बारिश जो है वो हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 26 जुलाई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। राजस्थान के कई हिस्सों में भी 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में 26 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जो है वो रहने का अनुमान है। सो ऑफ कोर्स, जो मेन जगहें हैं जैसे कि मुंबई और दिल्ली, अब ऐसे में जब यहां पर बारिश होने का अनुमान होता है तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है उससे अफेक्ट होती है। सो ऐसे में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जरूर देख लीजिएगा अपनी फ्लाइट्स का शेड्यूल और कैसे वो होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि बारिश जो है वो काफी मूसलाधार इन राज्यों में हो रही है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: ਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ मिस्टर ट्रंप इज बैक विद हिज टैरिफ। जी हाँ, ऑफकोर्स इट इज अ ट्रंप रोस्टिंग सेशन, बट ऑफकोर्स पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है, खबरों के तौर पर। जी हाँ, उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिया और जो टैरिफ उन्होंने 50% लगाया है, क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्री पर ये लगा है? गेस कीजिए। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द कनाडा, द पड़ोसी देश, वही कनाडा जिसके प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर बड़े मजे से ये फिनाले देख रहे थे फीफा वर्ल्ड कप का, और आते ही वहां से उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, मैं फिर से टैरिफ लगाऊंगा। हम लोगों को लग रहा था कि ये इंसान भूल गया, बट ये इंसान कुछ नहीं भूलता, ये ऐसा ही काम करता है। सो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले कई तरह के सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि ये कदम अमेरिकी कारों, डेयरी उत्पादों और शराब के साथ किए जा रहे असम्मान व्यवहार के जवाब में उठाया गया है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक नया टैरिफ 30 दिन के भीतर लागू होगा। जी हाँ, मतलब अभी नहीं लगा है, 30 दिन में लगेगा। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सो टैरिफ के दायरे में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें शामिल हैं, इनमें वाइन, हॉकी स्टिक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि ऊर्जा, पोटाश, अहम खनिज और मछली समेत कनाडा के कई बड़े निर्यात को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मॉक कॉनी ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को आगे आने वाले हफ्तों में और तेज करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी फैसले को एक तरफा व्यापार कार्रवाई करार दिया। कॉनी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत तब हुई थी जब अमेरिका ने कनाडा अमेरिका मैक्सिको समझौते का उल्लंघन करते हुए कई टैरिफ लगाए थे। उन्होंने अपने बयान में कनाडा की संप्रभुता के लिए खतरे का भी उल्लेख किया। इसे ट्रंप के उस पुराने बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाने की बात कही है। जी हाँ, नाउ दिस पर्सन इज जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट अगेन मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ बट मैं कह नहीं पा रही हूँ बिकॉज वी आर इन द मीडिया इंडस्ट्री और हमें बहुत ही साफ शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों को रोस्ट करना है। वी कांट बी ब्रूटल अबाउट इट। द थिंग इज कि ये इंसान जो है वो बहुत कुछ कर रहा है गड़बड़, लेकिन गड़बड़ के साथ जो है वो एक टैरिफ वाली जो चीज़ ये गड़बड़ करता है जो कि बाकी इकोनॉमीज के साथ ये खेलता है, ये फिर से इसने करना शुरू कर दिया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर ट्रंप, या द डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि अभी कुछ दिन पहले वो पहुंचे थे फीफा वर्ल्ड कप में न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में, जहां पर स्पेन और स्पेन के साथ मैच हुआ था अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना को वो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अर्जेंटीना हार गई, स्पेन जीत गया। स्पेन को ट्रॉफी देते हुए ज्यादा खुश वो नजर नहीं आ रहे थे, और स्पेन को ट्रॉफी मिलती है तो बाद में फीफा के चेयरपर्सन के साथ वो भी खड़े हो जाते हैं। गेस व्हाट हैपेंड। जी हाँ, स्पेन ने अपनी फोटो डाली है और उसमें से ट्रंप को एडिट कर दिया, वही फोटो जो कि ट्रंप ने खिंचवाई थी विनिंग टीम के साथ। स्पेन ने वो फोटो डाली है अब सोशल मीडिया पर, ऑफिशियल अकाउंट पर, और उन्होंने ट्रंप को एडिट आउट कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि ये इंसान हमको चाहिए ही नहीं। मतलब ठीक है, आ गया था तो ठीक है, हम क्या ही कर सकते हैं, बट डिजिटली हम इस इंसान को निकाल सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कि जबरदस्ती घुस गए उस विनिंग टीम की उस बहुत ही जबरदस्त मौके की पिक्चर में, उसमें से भी उनको निकाल दिया गया। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की भी नहीं हो सकती, और ये इंसान चाहता है कि हम इसकी पूजा करें। क्या बात है, पूजा नहीं तुम्हारी तो होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ अब हम चलते हैं, आपको एक और गाना सुनाते हैं और फिर करते हैं आपसे और भी बहुत सारी बातें।

क्या बात है तेनु, सूट सूट करता, मतलब जो भी आप पहन रहे हो आपको सूट करता है, इसका यही मतलब है। और इसी के साथ आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज के बारे में बताते हैं। अब आप लोगों को अगर मीठा बहुत पसंद है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है ये जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, मीठे का शौकीन कौन कौन है? जी हाँ, पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप मीठे के शौकीन हो, क्योंकि मीठे के शौकीनों को ही ये चीज अच्छी लगने वाली है जो मैं बताने वाली हूँ। सो अपेरेंटली साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है शुगर इन द डेप्थ्स ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आप लोग बोलोगे हैं, अरे वाह, चीज केक इंटरस्टेलर स्पेस में भी पहुंच गया? अरे नहीं नहीं, चीज केक नहीं पहुंचा है, बट शुगर जो है इन डिफरेंट फॉर्म डिटेक्ट की गई है। जी हाँ, सो साइंटिस्ट ने जो है वो अभी उनको पता चला है कि शुगर जो है उनको सेंटर ऑफ द मिल्की वे में मिली है, और इसको बोला जाता है एरिथ्रोलोज। जी हाँ, जैसे ग्लूकोज होता है वैसे ही इसको एरिथ्रोलोज जो है वो कहा जाता है। या यस, द सेम शुगर फाउंड इन द रास्पबेरीज एंड सेल्फ टैनर्स। जी हाँ, So, ये वही शुगर है जो आपको रास्पबेरी में मिलती है, वैसे ही काइंड ऑफ शुगर जो है वो स्पेस में साइंटिस्ट को मिली है। और ये जो है वो वेरी फर्स्ट ट्रू शुगर जो है जिसको डिटेक्ट किया गया है इंटरस्टेलर स्पेस में। और जैसे कि आपको पता है कि शुगर्स जो है वो की बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर आर RNA एंड DNA। सो दिस डिस्कवरी मीन्स द इंग्रीडियंट्स फॉर लाइफ कुड बी वे मोर कॉमन अक्रॉस द गैलेक्सी देन वी थॉट इट वॉज। मतलब हमारे DNA में शुगर होती है, हमारे RNA में शुगर होती है। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि लाइफ शुगर से शुरू होती है। और अगर आपका जलेबी खाने का मन है तो खा लीजिए, क्योंकि लाइफ शुरू ही शुगर से होती है यार। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा तुम हमको सलाहें गलत देती हो, हमने देख लिया। अरे नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ कि स्पेस में भी शुगर है।

लाइफ की बुनियाद शुगर है, तो आप अगर शुगर के शौकीन हो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आगे से आपका डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट आपको बोले ना कि शुगर छोड़नी पड़ेगी, आप लोग बोल देना कि ठीक है यहाँ स्पेस शुगर नहीं छोड़ रहा है, हम क्या शुगर छोड़े हैं, या आप कह सकते हो ये बात। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, और हमारा फेवरेट सेगमेंट जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इसका पहला गाना जो हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। वो लता जी का गाया हुआ एक क्लासिक सॉन्ग है। उस गाने की जो मूवी है उसका नाम है असली नकली, और गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार अमर। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुम्हें इस गाने से प्यार बहुत है, मतलब अभी कुछ दिन पहले भी इसे प्ले किया था फिर से कर रही हो। वेल, इस गाने से किसे मोहब्बत नहीं है, किसे इश्क नहीं है, मतलब ये गाना है कि क्या है, साधना के एक्सप्रेशंस, वो प्यारी प्यारी अदाएं, चांद को देखकर उनका वो गाना गाना, और साथ में देवानंद साहब का अपने वो एक्सप्रेशंस और अदाएं दिखाना, कौन भुला सकता है। इसकी वीडियो अच्छी है और ऑफ कोर्स इसकी ऑडियो के तो कहने ही क्या है। मतलब मैं कहना चाहूंगी कि इस मूवी का ये जो गाना है जिसका म्यूजिक बनाया है शंकर जयकिशन ने, गाया है इसे ऑफ कोर्स लता जी ने, और लिरिसिस्ट हैं शैलेंद्र जी। जी हाँ, क्या कहूँ मैं, मतलब तीनों ने इतना बाकमाल काम किया है कि वी जस्ट लव दिस सॉन्ग। सो या असली नकली अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये मूवी जबरदस्त है, और ये गाना जरूर सुनिए। अगर आपने ये गाना भी नहीं सुना तो आपने सच में क्या सुना है, बट सुनिए जरूर। और किससे भी हम आपको सुनाने वाले हैं पुराने गाने के साथ में, और साथ में आप लोग अपने फेवरेट पुराने गाने भी फरमाइश कर सकते हैं, क्योंकि ये है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट, और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने ही प्ले करते हैं और पुराने किस्से ही आपको सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही लेजेंडरी गाने का है। जी हाँ, एक ऐसा लेजेंडरी गाना जो आज भी कोई सुनता है तो उसका कायल हो जाता है। बहुत सारे लोग इस गाने को रोमांटिक समझते हैं, पर ये गाना दर्द भरा है, रोमांटिक नहीं है। अगर आप इसके लिरिक्स सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है भाई, दर्द भरा है, सेंटी सॉन्ग है, प्यार वाला नहीं है, इश्क का इजहार नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर तानेबाजी हो रही है। अब आप लोग गेस कर ही रहे होंगे, तो चलिए आपको थोड़े और हिंट्स में दे देती हूँ और साथ में किस्सा भी सुना देती हूँ। सो ये किस्सा है 1964 का, जब किशोर दा की एक पिक्चर, एक फिल्म जो है वो बन रही थी, और उसके एक गाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और वो मिलकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एक धुन बना रहे थे, एक ऐसी धुन, एक ऐसा गाना जो कि बहुत ही दर्द भरा था। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा दर्द भरा था, और इस पर जो है वो काम कर रहे थे लिरिसिस्ट भी और साथ में म्यूजिक डायरेक्टर भी। अब इस गाने के लिए बेसिकली रफी साहब को चूज किया गया था कि रफी साहब ये गाना गाने वाले हैं, लेकिन जब एक दिन किशोर दा अपनी पिक्चर की शूटिंग के दौरान इसकी धुन को ऐसे ही मजाक मजाक में गाने लग गए, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी सुनने लगे। जी हाँ, उन्होंने देखा कि ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे गाया जा रहा है। और जैसे जैसे किशोर दा उसको गा रहे थे, वो गा तो मजाक में ही रहे थे, वो सीरियसली नहीं गा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे किशोर दा आगे गाते गए, उनकी आवाज में वो दर्द जो है वो आता गया, और वो जो दर्द चाहिए था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को इस गाने में, उन्हें वो मिल गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि लिरिसिस्ट आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इस गाने को बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के लिए उन्होंने रफी साहब का चयन किया था कि रफी साहब इस गाने को गाएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाएंगे। लेकिन जब किशोर दा ने मजाक मजाक में ही से गाया और इतनी खूबसूरत तरीके से गाने की कोशिश की, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वहीं पर अपना डिसीजन चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि किशोर दा, अब आप ये गाना खुद ही गाएंगे, ये कोई और नहीं गाएगा, आप ही इस गाने को गाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आपसे ज्यादा जस्टिस इसके साथ कोई कर ही नहीं सकता। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन से गाने की बात हो रही है? चलिए मूवी का नाम मैं ले देती हूँ। मूवी का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। 1964 में ये आई थी, और इसका वही गाना जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए थे हिट होने के। आज भी जब कोई नया सिंगर आता है तो इस गाने को गाने की कोशिश जरूर करता है अपनी कामयाबी को दिखाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरे महबूब कयामत होगी, या अब अगर आपको नहीं पता था तो इसको पहले रफी साहब गाने वाले थे, लेकिन फिर कुछ चेंजेस आए और फिर किशोर दा ने इसे खुद ही गा दिया।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और किस्सा सुनाते हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प है। और ये किस्सा है रफी साहब, किशोरदा, आदि बर्मन और अमजद खान। और अगर आपको नहीं पता अमजद खान कौन है तो कितने आदमी थे, बसंती। हाँ, मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं गब्बर की, या द वेरी ओन गब्बर ऑफ बॉलीवुड। एंड अमजद खान वही है जिन्होंने गब्बर का कैरेक्टर प्ले किया था। सो कालिया मूवी का ये किस्सा है। जी हाँ, कालिया मूवी में अमजद खान भी थे, इसमें अमिताभ बच्चन थे, और इसके दो गानों पर जो है ये बहस हो रही थी। और यहाँ पर आदि बर्मन जो कि पंचम दा है, बेसिकली पंचम दा यानी कि आदि बर्मन, इसके लिए दो गानों के साथ कुछ नया करना चाहते थे। जी हाँ, सो वो इसका एक जो दुख भरा गाना है, जो सेंटी सॉन्ग है, वो किशोर दा से गवाना चाहते थे, और हंसता खेलता हुआ खुशी वाला गाना जो है वो गाना चाहते थे, मस्ती वाला गाना जो है वो रफी साहब से गवाना चाहते थे। जी हाँ, अब ऐसे में रफी साहब जब भी सेंटी गाना गाते हैं, वो कितना खतरनाक गाते हैं ये सबको पता था। तो ये चीज अमजद खान को जब पता चली, तो अमजद खान ने पंचम दा यानी कि आदि बर्मन को सीधा सीधा कह दिया कि आदि बर्मन साहब, ये मत कीजिए आप, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट यहां मत कीजिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। जी हाँ, अब यहां पर ये चीज देखकर सबके सब लोग जो हैं वो सोच में पड़ गए कि क्या होने वाला है, क्योंकि सबके सब लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, फिर चाहे वो किशोर दा हो, फिर चाहे वो रफी साहब हो, फिर चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा यानी कि आदि बर्मन हो, या फिर अमजद खान हिमसेल्फ। अब ऐसे में रफी साहब ने देखा कि बहुत ज्यादा बहसबाजी हो रही है और किसी भी कंक्लूजन पर ये नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मस्ती वाला गाना ही गाऊंगा। और उनका ये फैसला देखकर सबको मानना पड़ा। जी हाँ, अब क्योंकि रफी साहब ने कह दिया था और रफी साहब को बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मानते थे, अब ऐसे में रफी साहब ने कुछ कहा तो सबको ये बात माननी पड़ी। फिर किसी को कोई शिकायत नहीं रही, कुछ नहीं रहा, और ऐसा ही हुआ। रफी साहब ने वो मस्ती वाला गाना गाया और साथ में वो जो सेंटी वाला सॉन्ग था वो किशोर दा ने गाया। अब आप गेस कर सकते हैं हम कौन से गानों के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए गेस कीजिए। और यहाँ पर हम आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत गाना प्ले करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत, एंड आई मीन इट फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट द थिंग इज कि यहाँ पर ये गाना मेरी तरफ से नहीं है, ये एक फरमाइशी गीत है जो कि आया है हमारी बहुत ही खास लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। जी हाँ, जिन्होंने किया है ये गाना फरमाइश। गाने का नाम है वैजयंती माला जी का है ये दर्द भरा गाना, और गाने का नाम है मेरा दिल ये पुकारे आजा। जी हाँ, मैं नहीं गा रही हूँ, डोंट वरी, वही गाएंगी जिनको बुलाया गया है गाने के लिए। सो डोंट वरी, टेंशन में मत आइएगा। सो थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए। बिना देर किए प्ले करेंगे ये गाना, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कब? वेल ऑफकोर्स वापस आएंगे हम कल, कल आपसे बात करेंगे, कल आपसे गपशप करेंगे, कल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको हंसाएंगे, आपको नचाएंगे और थोड़ा सा गवाएंगे भी, अगर आप अच्छा गाते हो, नहीं तो मत गाइएगा, अगर आप अपनी आर्जेनिविया की तरह गाते हो तो मत गाइएगा प्लीज, फिर इतनी कृपा करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज गाइए भी मस्त तरीके से, मजेदार तरीके से। एंड या इसी के साथ हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जिसका नाम है बेखुदी में सनम। हाँ, क्या बात है। और इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बेखुदी का क्या मतलब होता है, जरूर दीजिएगा इसका आंसर, आपके पास नंबर है। और दैट्स अबाउट इट, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में 1 in 15 million करिश्मा महिला ने दिए 4 जुड़वा बच्चों को जन्म। जी हाँ, ब्रिस्बेन से एक हैरान कर देने वाली और खूबसूरत खबर आई है। रॉयल ब्रिस्बेन एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में एक महिला ने एक साथ 4 एक जैसे आइडेंटिकल बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्राकृतिक रूप से ऐसा होना 1.5 करोड़ मामलों में सिर्फ एक बार होता है। क्या बात है। इसके साथ ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का 6 साल का काउंटडाउन शुरू। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स खेलों के आयोजन में ठीक 6 साल बचे हैं और इसी खुशी में पूरे क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन शहर को ग्रीन एंड गोल्ड लाइटों से सजाने का जश्न शुरू हो गया है। वहीं सिटी काउंसिल ने जारी किए नए रेट नोटिस। जी हां, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने स्थानीय निवासियों के लिए नए रेट नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। काउंसिल का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल लोकल रोड्स, पार्क्स और युवाओं से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नई बस रैपिड ट्रांजिट सेवा। शहर में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए ब्रिस्बेन मेट्रो की नई बस रैपिड ट्रांजिट सेवा के ट्रायल रन शुरू हो गए हैं, जिससे काम पर जाने वाले यात्रियों का सफर काफी आसान हो जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन रिवरसाइड कम्युनिटी पार्क का उद्घाटन। परिवारों और बच्चों के लिए ब्रिस्बेन नदी के किनारे एक नए आधुनिक कम्युनिटी ग्रीन पार्क का उद्घाटन किया गया है, जहां वीकेंड्स पर ओपन एयर म्यूजिक और लोकल मार्केट्स का आयोजन होगा। वहीं मौसम और वीकेंड फेस्टिवल अपडेट। जी हां, ब्रिस्बेन में आज और इस हफ्ते का मौसम सुहाना और हल्का ठंडा रहने का अनुमान है। इस वीकेंड शहर के साउथ बैंक इलाके में विंटर फूड एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। देश के में पहली बार 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए डेंगू की वैक्सीन QDENGA को मंजूरी मिल गई है। DCGI से हरी झंडी मिलने के बाद अब डेंगू के खिलाफ लड़ाई और भी मजबूत होगी। वहीं सेमिकॉन मिशनर 2.0 को मिली कैबिनेट की हरी झंडी। जी हां, टेक वर्ल्ड में भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन मिशनर 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इससे देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वहीं विक्रम 1 की सफल स्पेस लॉन्चिंग। जी हां, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली ही उड़ान में सैटेलाइट्स को उनकी सही कक्षा में पहुंचा दिया है। इस सफलता के साथ भारत प्राइवेट स्पेस लॉन्चिंग करने वाले दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। वहीं दिल्ली में छात्र प्रदर्शन और सोनम वांगचुंग का अनशन। राजधानी दिल्ली में परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। वहीं लद्दाख की मांगों को लेकर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुंग का अनशन लगातार जारी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सेहत का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं नेवी की बड़ी कार्रवाई, समुद्री लुटेरों को उम्र कैद। जी हां, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय नौसेना की जाबाजी की जमकर तारीफ की, जिन्होंने समुद्र के बीचों बीच ऑपरेशन चलाकर इन अपराधियों को दबोचा था। वहीं भारत ब्रिटेन का नया ट्रेड और पेंशन समझौता लागू। भारत और ब्रिटेन के बीच नया आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गया है। इससे ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को डबल सोशल सिक्योरिटी टैक्स से बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ब्रिटेन को मिला नया प्रधानमंत्री। जी हां, ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एंडी बर्नहम ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। जी हां, 10 डाउनिंग यानी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने पहले भाषण में उन्होंने अपना आम जनता को राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा किया है। वहीं सड़क हादसों पर WHO की रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 21% की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस आंकड़े को और बेहतर करने के लिए सभी देशों से सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाने की अपील की है। वहीं हॉर्मुज की खाड़ी में बढ़ा तनाव। जी हाँ, मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हॉर्मुज की खाड़ी से गुजर रहे एक कमर्शियल कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं ब्लैक सी व्यापारिक मार्ग पर हमला। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के पास एक मर्चेंट शिप पर हुए हमले की भारत समेत कई देशों ने कड़ी निंदा की है। इस हादसे में कुछ नाविकों की जान जाने की खबर है, जिसके बाद समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ यूरोप में ग्रीन एनर्जी की नई पहल। यूरोपीय देशों ने इस साल के अंत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश दोगुना करने का ऐलान किया है। इससे विंड और सोलर एनर्जी सेक्टर को नया विस्तार मिलेगा। वहीं ग्लोबल AI सुरक्षा पर वैश्विक बैठक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल और इसके खतरों से बचने के लिए दुनिया भर के प्रमुख देश एक नए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के ड्राफ्ट पर सहमति बनाने के करीब पहुंच गए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्पेन ने जीत लिया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब। जी हां, फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। स्पेन ने रोमांचक फाइनल मैच में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वहीं मेस्सी का भावुक संदेश। जी हां, वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद लियोनेल मेस्सी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए एक भावुक संदेश शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि इस हार के जख्म को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वे प्रशंसकों के प्यार की हमेशा आभारी रहेंगे। वहीं रॉड्री बने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। स्पेन के स्टार मिडफील्डर रॉड्री को पूरे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन और गेम को कंट्रोल करने के लिए गोल्डन बॉल के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस में अर्जुन एरिगेसी की बढ़त। शतरंज के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर पॉइंट टेबल पर संयुक्त रूप से टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इसी के साथ पीवी सिंधु की शानदार वापसी। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर अपनी पुरानी लय में वापसी का ऐलान कर दिया है। उनकी इस जीत से आगामी चैंपियनशिप के लिए भारतीय फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। वहीं फीफा का 64 टीमों वाले वर्ल्ड कप पर विचार। जी हां, फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा आने वाले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में टीमों की संख्या बढ़ाकर 64 यानी कि 64 करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत जैसी उभरती टीमों के लिए वर्ल्ड कप खेलने का रास्ता आसान हो सकता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भरतमान को दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव खरोड़ इन एंड एज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi मुफ्त किट भेजांगी। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री दे टॉप एक्टर्स विचो एक हैगे ने शाहिद कपूर, जो इन दिनी है अपनी आने वाली फिल्म ओ रोमियो दे प्रमोशन विच लगे हुए ने। इस फिल्म विच शाहिद कपूर नू तृप्ति टिमरी दे नाल लीड रोल दे विच देखा जाएगा। ओ रोमियो दी जे गल करिए तां ओ रोमियो दी रिलीज तो पहला मैं सोचा कि क्यों ना तुहानू कुछ शाहिद कपूर दीआं चुनिंदा उन्हां फिल्मां बारे दस्सां जो बेस्ट फिल्मां रहीआं जिन्हां ने निर्मातावां प्रोड्यूसर्स दी चांदी करती सी, उन्हां नू बहुत ज्यादा कमाई करवाई सी। यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचते होंगे कि शाहिद कपूर नू कास्ट करके असी सही फैसला लिया है ना। दसा उन्होंने फिल्मों बारे दस दिया, पर पहला सुनो एक गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। जदों जदों इंडिया दी बेस्ट फिल्मां दी गल होगी तां नाम हैगा जिहड़ा ओह पद्मावत दा तां जरूर आऊगा, क्योंकि पद्मावत नो डाउट बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है। जिन्नी प्रेज इस दे विच रणवीर सिंह दी नैगेटिव रोल दे विच होई सी, उन्नी ही प्रेज इस दे विच एक शांत जे महाराजा दे रूप दे विच शाहिद कपूर दी वी होई सी। जी हाँ, संजय लीला भंसाली दे निर्देशन विच बनी सी फिल्म पद्मावत। ते शाहिद कपूर दी फिल्म इह जिहड़ी पद्मावत है उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 550 करोड़ तो उपर का बिजनेस किया। शाहिद कपूर के हुण तक के करियर की सब तो ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई सी। बहुत ज्यादा प्यार मिलिया सी इस किरदार नूं वी शाहिद दे नूं।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसर हुआ ने ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए लव स्टोरीज दी रहंदी दुनिया तक जदो जदो गल होगी जदो जदो गल होगी ना के कहा जाऊगा कि लव स्टोरी बहुत सोहनी है उदो उदा नाम कबीर सिंह दा नाम वे अजिहा नहीं हो सकना क्योंकि कबीर सिंह बहुत ही शानदार बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है। रणबीर सिंह रणबीर नहीं नहीं नहीं नहीं शाहिद शाहिद कपूर दी बेस्ट मूवीज दे विचों एक है कबीर सिंह। ता शाहिद कपूर दी रोमांटिक ड्रामा है की है जिहड़ी कबीर सिंह इसने दुनिया भर दे विच बहुत शानदार कमाई कीती सी 377 करोड़ तो पार दी कमाई कीती सीगी। ते इस मूवी दा निर्देशन संदीप रेडीवांगा ने कीता सी जो हुण दोबारा तो नाल नजर आ रहे हैगे ने ओ रोमियो दे विच शाहिद कपूर दे शाहिद कपूर दी ओ रोमियो नूं डायरेक्ट भी संदीप रेडीवांगा ने ही कीता। दोनों जदों इकट्ठे हुंदे ने तां मूवी हिट होने की गारंटी खैर हो जाती है।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक मूवी आई सी ना रोबोट वाली, रजनीकांत थी, याद आया ना, ऐश्वर्या राय दे नाल बहुत ज्यादा सोहनी सी। उस तो बाद उसका सैकेंड पार्ट भी आया सी, उसनू इना प्यार नहीं मिल सकिया सी। पर रोबोट वालियां फिल्मां हुंदियां ने जिहड़ियां उह कमाल कर जाणो तां कमाल दी गल हुंदी ने। जिवें रजनीकांत कमाल कर गए सी, शाहिद कपूर भी कमाल कर गए सी। तेरी बातों में उलझा जी याद विच, बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है। इस दे विच रोबोट शाहिद कपूर ने ही कृति सैनन बनी सी। इनी ज्यादा सोहनी रोमेंटिक कॉमेडी सीगी, जिसका म्यूजिक भी शानदार, डांस स्टेप्स अले तक वायरल, म्यूजिक भी शानदार, डायलॉग भी शानदार, एक्टर्स भी शानदार, कहानी भी शानदार। ताही ता इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की सी। वधिया फिल्मों के विच गिनी जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल सी बने होयो। अगला जेड़ा नाम आंदा हैगा वो है जी आर राजकुमार दा। इस दा एक गीत आया सी साड़ी के फॉल्सा, वो अज तक सुनिया जांदा हैगा, लोग सब बहुत पसंद करदे ने, डांस हुंदे ने अज वी उहदे ते। कहानी एवरेज सी मतलब ठीक ठाक फिल्मां दी लिस्ट विच इसनूं रखदे आ। सोनाक्षी सिन्हा सी लीड रोल दे विच, इस दे विच ऑपोजिट शाहिद कपूर ते। इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ तो पार दा बिजनेस इसने कर लिया सी, पर मेरे परसनल एक्सपीरियंस दे नाल मैनूं एवरेज मूवी लगी सी, बट हां शाहिद दी एक्टिंग इस दे विच भी बाकमाल सी।

0: भैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इन एंड एज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसौनी वन सरम वाले ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। एक बड़े साल पहला मूवी आई सी जिस दे विच बहुत सारे कलाकार से शाहिदा सी शाहिद की गल कर रहे आपां, शाहिद दे नाल नाल आलिया भट्ट भी सी, दिलजीत दोसांझ भी सी, करीना कपूर भी सी। बिल्कुल सही तुसी गैस कीता। गल कर रही हां मैं फिल्म उड़ता पंजाब ते उड़ता पंजाब दे विच ना शाहिद कपूर दा किरदार हैगा जिहड़ा टोटली डिफरेंट सी। ड्रग एडिक्ट एक नौजवान बनिया सीगा उह ते बने सी, बड़ा वधिया एक्टिंग कीती सी, नो डाउट बहुत ज्यादा सोहनी एक्टिंग। इस दे विच चारा ही किरदारा ने बहुत सोहनी कीती सी ते स्टोरी भी इसकी लाजवाब हैगी है। उड़ता पंजाब हैगी है जिहड़ी 100 करोड़ दे नेड़े तक दे कलैक्शन दे विच पहुंच गई सी। कई साल पहलां दी गल कर रही हां मैं, तकरीबन एक दहाका हो गया हैगा। इस फिल्म विच शाहिद ने तेजिंदर सिंह उर्फ गबरू दा किरदार निभाया सीगा।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिन से बने हुए। हुण एक फिल्म आई सी कश्मीर दी, बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म, उस दे विच भी शाहिद कपूर छा गए से, हालांकि नाल उस दे विच तब्बू सी, तब्बू ने भी बहुत ज्यादा वधिया रोल किया सी। तब्बू दी भी हुण तक इस फिल्म दे विच तारीफ हुंदी हैगी है। गल कर रही हां मैं हैदर दी जी। हां, उड़ता पंजाब तो बाद ना शाहिद कपूर दी हैदर 6वें स्थान ते रही। इस मूवी विच शाहिद दे नाल तब्बू अते के मैनन लीड रोल दे विच है कि इस फिल्म ने दुनिया भर दे विच बॉक्स ऑफिस ते 100 करोड़ दे नेड़ तेड़, नहीं 80 करोड़ दे नेड़ तेड़ दी कमाई कीती सी। ते इस नूं बेस्ट फिल्मां दे विच मैं तां कंसीडर करूंगी क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा सोहनी है।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सिखियां तो तुहानूं दसणियां।

0: मेन ऑडिटोरियम। बुक योर टिकट्स नाउ एट drytickets.com.au। Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

देखो मेरा हो चुका है तुहाड़े तो इजाजत लैण दा, पर जांदे जांदे हुण गल ओ रोमियो दी तां कर लिए जिथो शुरुआत कीती सी, जहां विशाल भारद्वाज दे निर्देशन विच बनी हैगी है। फिल्म प्रोड्यूसर हैगे उसे, ओह निर्देशन है, निर्देशक हैगे जिहड़े ओह विशाल भारद्वाज है। ओ रोमियो विच शाहिद कपूर नूं लीड रोल दे विच देखिया जाऊगा। हुण देखना यह होगा कि ओ रोमियो शाहिद कपूर दे करियर दी सब तो ज्यादा कमाई करन वाली फिल्म बन पाउंदी है या नहीं, थानू की लगता है तुसीं जरूर दसो। बाकी जिहड़ियां मैं फिल्मां दी गल कीती हैगी है शाहिद कपूर दीआं, ओदे बारे थोड़ा की कहना हैगा वह भी जरूर दसो, है ना। ते फटाफट दे नाल तुसी साडे नाल जुड़ना शुरू करो। ते एक मैं एक चीज हुण जे तुसी मेरी गल ते पड़ी होवे तां तुसी जरूर दस्यो कि मैं एक किसी डायरेक्टर दा नाम गलत लिया हैगा है कि वह रोमियो दे विच शाहिद कपूर दे नाल काम करनगे। तुसी जरूर दस्यो, मेरी गलती फड़ो ते साडे नाल गल्लां करो। बाकी कल करदे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलन।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: आया क्या?
3: आएगा।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में।

हरे कृष्ण प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। आज का हमारा विषय इस जगत के कुछ ऐसे प्रश्नों पर आधारित है जिसका सुझाव हम जीवन भर ढूंढा करते हैं। हम कुछ गहराई से आज प्रकृति को देखेंगे। आज की हमारी चर्चा भगवद गीता के 7वें अध्याय 4थे श्लोक पर आधारित रहेगी। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियन में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियां हैं। अब हम सब जानते हैं कि जिस जगत में हम रहते हैं वो अत्यंत अद्भुत है, मात्रा में भी, आकार में भी तथा रचना में भी। इसकी रचना कैसे की गई थी और इस जगत को फिर अनेकों प्रकार के जीवित प्राणियों के द्वारा कैसे भरा गया और ये जगत कितने समय तक रहेगा, यानी जिसको अंग्रेजी में कॉस्मिक टाइम स्केल कहते हैं, तो ये पूरी जगत की रचना कितने समय तक रहेगी, कब इसका विनाश होगा और ये जगत है क्यों, क्या भगवान स्वयं इस जगत से कोई संबंध रखते हैं। जीवन के इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम वैदिक साहित्य से देने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी विचार किया है कि केवल हमारा मनुष्य तन, ये देह या शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना असाधारण है। हमारे शरीर का एक तुच्छ भाग जो हमारे दांत है, उसी को संभालने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए हजारों डेंटिस्ट है। जी हां, दांत हमारे शरीर का एक बहुत ही तुच्छ भाग है, परंतु उनको ठीक रखने के लिए हजारों डेंटिस्ट है। बिल्कुल इसी प्रकार कई स्पेशलिस्ट लोग हैं जो डॉक्टरेट का अध्ययन कर रहे हैं, PhD, किस विषय पर, शरीर के किसी एक भाग पर। जैसे आंख पर 9 स्पेशलिस्ट हो, आंखों का स्पेशलिस्ट हो, कान का स्पेशलिस्ट हो, हृदय का स्पेशलिस्ट हो और किडनी का हो इत्यादि। हम विचार कर सकते हैं इस प्रकार कि हमारा ये शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है और एक छोटा से छोटा भाग भी हमारे सारे शरीर को संचालित करने में सहयोग देता है और इसी शरीर से उसकी पुष्टि भी होती है। इतनी ऊंची मात्रा में ये कोऑर्डिनेटेड कार्य जो होता है शरीर के द्वारा, उसे कितनी शुद्धता, सुनिश्चितता तथा सूक्ष्मता से संपन्न किया जा रहा है। शरीर के ये सभी भाग किस प्रकार कार्य करते हैं, केवल वही जानने के लिए बुद्धिमान लोगों को कितने वर्षों तक इस पर अध्ययन करना पड़ रहा है। कितनी इनक्रेडिबल प्रिसिशन से शरीर का प्रत्येक अंग कार्य कर रहा है दूसरे भागों के साथ। तो इस प्रकार ये शरीर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड या सुव्यवस्थित योग्य देश के जैसा है। एक अच्छी सरकार को ये चाहिए कि वे अपने नागरिकों के लिए भोजन और जल उपलब्ध करे, सफाई और स्वच्छता बनाए रखे, रोगियों के लिए चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करे। और इस सारे ब्रह्मांड की सरकार में हम देख सकते हैं अनाज, फल, शाक भाजी इत्यादि, इसे प्रकृति के द्वारा भगवान उपलब्ध करते हैं। समुद्र के नमकीन पानी को सूर्य पवित्र जल में बदलता है और बारिश के द्वारा उसी पवित्र जल की वितरण की योजना भी बनाई गई है। और फिर सूर्य और बारिश के द्वारा स्वच्छता भी आ जाती है, सैनिटेशन इज टेकन केयर ऑफ। और फिर औषधि के रूप में जड़ी बूटी रोग या बीमारियों का इलाज करती है, चिकित्सा करती है। तो इतनी बड़ी सरकार जो कि हमारे सामान्य देश की सरकार से सैकड़ों गुना अधिक बड़ी है, बिना कोई ईश्वर के और बिना कोई लक्ष्य के कैसे प्रकट हो सकती है। निश्चित ही भगवान ने इस जगत की रचना सभी प्राणियों को एक अवसर देने के हेतु से, अर्थात सभी प्राणियों का भगवान के साथ क्या संबंध है, अपने जीवन को कैसे शुद्ध बनाए और हम किस प्रकार उनके पास वापस चले जाए, इसी हेतु से इस जगत की रचना की है। अब जैसे प्रत्येक सरकार के कुछ कानून होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जगत के भी कुछ ऐसे कानून है जिससे बचा नहीं जा सकता।
और ऐसे नीति नियम और कानूनों को हम कैसे परखे, हम कैसे जाने। भले सभी लोग अपार सुख की खोज में है और कोई बिल्कुल दुख की खोज में नहीं है, परंतु जो हमें प्राप्त होता है वो तो विपरीत है। हम सब ने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि हमारे जीवन में बिन बुलाए दुख आते हैं। हम दुख की मांग नहीं करते हैं और ना ही दुख के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख जबरन आते हैं। क्या बिना प्रश्न किए हमें इन दुखों को स्वीकार करते ही रहना चाहिए, सहते ही रहना चाहिए? अधिकांश लोग यही करते हैं। जब उन्हें कुछ पीड़ा होती है तो उस पीड़ा को ढांकने के लिए वो कुछ दवाइयां या औषधियां लेते हैं, परंतु पूछते नहीं है कि ये पीड़ा कौन दे रहा है और क्यों। एक बार एक व्यक्ति एक कमरे में से मकड़े के जालों को साफ कर रहा था और इस प्रकार के सफाई का काम करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही लंबी लकड़ी के अंत में एक झाड़ू को बांधा था। सफाई के दौरान एक बिल्ली की बच्ची सामने आ गई तो इस व्यक्ति ने बिल्ली के बच्ची के मुख को यह झाड़ू दिखलाया। अपने पांव का उपयोग करते हुए ये छोटी सी बिल्ली झाड़ू के साथ लड़ने लगी। जितनी बार इस व्यक्ति ने इस बिल्ली को झाड़ू से नीचे दबा दिया, उतनी ही बार ये बिल्ली गिरकर वापस उठ खड़ी हुई और झाड़ू से लड़ने लगी। इस बेचारी बिल्ली को यह पता ही नहीं चला कि इस झाड़ू के पीछे एक लंबी लकड़ी है और इस लंबी लकड़ी को एक व्यक्ति ने अपने हाथों में लिया है। तो बिल्कुल इसी प्रकार इस जगत में आम लोगों की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, जिसके कारण वे ये जान नहीं पा रहे हैं कि उनके पास ये दुख कहां से आ रहा है और उनका ये जीवन उन्हें कहां ले जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि जीवन में दुख अकस्मात नहीं आ जाते हैं, दुख कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। सफरिंग इज नेवर ऑटोमेटिक, इट हैज टू बी इन्फ्लिक्टेड बाय समवन। दुख किसी के द्वारा दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि आपको कोई चिकोटी काटता है जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो। भले आपको नहीं पता हो कि आपको कौन चिकोटी काट रहा है, फिर भी आप ये निश्चित जानते हैं कि ये पीड़ा आपो आप नहीं हो रही है। चिकोटी काटने की पीड़ा का कारण कोई है, कोई मुझे ये पीड़ा दे रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार जगत में दुखों की उपस्थिति एक संकेत है कि ये ऐसे कानून है जिससे हम बच नहीं सकते। चाहे हम विज्ञान में, चिकित्सा में या तकनीकी विकास में कितने निपुण हो जाए, और ये कानून है जन्म के, बूढ़ेपन या वृद्ध अवस्था के, रोग या बीमारियों के तथा मृत्यु के कानून। इन कानूनों से यहां कोई नहीं बच सकता। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का विकास हो रहा है मृत्यु के डर के कारण। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रियों का विकास हो रहा है बूढ़े हो जाने के डर के कारण। आधुनिक मनुष्य सुकड़ी हुई चमड़ियों को फेसलिफ्ट देकर ढांक सकता है, सफेद बालों को रंग लगाकर फिर से काला कर सकता है, परंतु उनमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि वे इन सब समस्याओं को सदा के लिए सुलझा सके। उनके पास बूढ़ी अवस्था की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जिन प्रकृति के कानूनों से बचा नहीं जा सकता, उनके और भी उदाहरण है, जैसे कि वे दुख जो हमें मन और शरीर से प्राप्त होते हैं, वे दुख जो हमें अन्य प्राणियों से प्राप्त होते हैं, और फिर वे दुख जो हमें प्रकृति के प्रकोप से मिलते हैं। ये सब कानून ये दर्शाते हैं कि एक परम कानून रचयिता है जो सब कुछ को संचालित करता है और जो हमारे ऊपर ये कानून लागू करते हैं। तो इस प्रकार इस जगत के ऐसे कानून जिससे हम बच नहीं सकते, उसका हमें इस जगत में कई बार अनुभव हुआ है। अब भगवान जो परम है, जो कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखने वाले परम पिता है, वे हमें दुखी क्यों करते हैं, वे हमें पीड़ा क्यों देते हैं? वास्तव में इस पीड़ा का कारण भगवान नहीं है, परंतु भगवान से अलग रहकर भोग करने की इच्छा ही इसका कारण है। पिछले किसी वेदवाणी कार्यक्रम में
हमने एक भटके हुए पुत्र की कथा बताई थी, जो बच्चा अपने माता पिता के हाथ की सुरक्षा छोड़ना चाहता है और एक भीड़ से भरे हुए रास्ते को अकेला पार करना चाहता है, वो निस्संदेह ही पास से जाने वाले बड़े ट्रकों की ध्वनि सुनकर घबराएगा और भयभीत हो जाएगा। यदि हम अपना जीवन उस प्रकार जिए जिसमें भगवान प्रसन्न रहे, जैसे देश के कानून अनुसार जीने वाला नागरिक, तो हमें निश्चित ही सुख की प्राप्ति होगी। वास्तव में हम व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकृति उन लोगों को दंड देती है जो भगवान के द्वारा दिए हुए शास्त्र ग्रंथ की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने से इनकार करते हैं और सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों को अपनाते हैं। उदाहरण के रूप में, जो तंबाकू खाते हैं उन्हें ब्रोंकाइटिस होता है, जो धूम्रपान करते हैं उन्हें कैंसर होता है, जो मदिरा पान करते हैं उनके कलेजे में समस्या हो जाती है, और जो अधार्मिक रूप से शारीरिक संबंध बनाते हैं वे एड्स और अन्य बीमारियों के वशीभूत हो जाते हैं। ये कुछ आम उदाहरण है। अब यहां एक बात समझने योग्य है कि दुखों के लक्षण अच्छे होते हैं, क्योंकि इनसे हमें दुखों के मूल कारण देखने का अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक दुख या पीड़ा के पीछे एक लक्ष्य होता है। एक चोर को बंदी बनाया जाता है ताकि वो अपने चोरी की प्रेरणा को छोड़ दे। जब हमारे शरीर का संचालन विचलित हो जाता है तो शरीर में गर्मी होने लगती है, बाहर से बुखार दिखता है, ताकि हम तुरंत उसका उपाय करें। इसी कारण शारीरिक गर्मी और पीड़ा का लक्षण बुरा नहीं होता है, क्योंकि इससे हमें ये अवसर प्राप्त होता है कि हम एक सकारात्मक कार्य अपनाएं इस बुरी परिस्थिति को सुधारने के लिए। और एक दूसरी बात जो हमने इस जगत में पाई है कि कितने लंबे समय तक सुख की प्राप्ति का प्रयास करते हुए भी हम दुखी होते ही रहते हैं। ये हमारा एक पराया वातावरण में होने का लक्षण है। एक मछली पानी के बाहर सभी प्रकार के सुख सुविधा होते हुए भी सुखी नहीं हो सकती, और ना ही एक व्यक्ति ऊंचे एक विमान में या प्रशांत महासागर के मध्य में उतना निश्चिंत या सुखद होने का अनुभव कर सकता है जितना उसको भूमि पर होने से होता है। तो हमारा स्थान ये जगत नहीं है जहां प्रत्येक कदम पर खतरा है, परंतु उस आध्यात्मिक जगत में है जो इस दुख भरे संसार के परे हैं। तो इस दुख से मुक्त होने के लिए हमें भगवान की शिक्षा अनुसार जीने की कला सीखनी होगी, तभी हम इस जगत में होते हुए भी सुख का अनुभव कर सकते हैं और अंत में अपने वास्तविक स्थान पर आध्यात्मिक जगत में पुनः स्थापित हो सकते हैं। तो भगवद गीता हमें जीने का लक्ष्य सिखलाती है, इस सृष्टि का लक्ष्य सिखलाती है, और हमें ये भी कहती है कि सही या गलत कार्य क्या है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक यंत्र का सही उपयोग एक मैनुअल सिखलाती है, छोटी सी पुस्तक जो उस यंत्र के साथ आती है। तो संक्षेप में, यह भौतिक जगत एक कैद खाने की तरह है जहां हम सबको रखा गया है भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा के कारण। जिस प्रकार आज्ञा ना मानने वाले या आज्ञा की अवहेलना करने वाले नागरिकों को जेल में रखा जाता है, बंदी गृह में रखा जाता है। देश की सरकार बंदी गृह में रहने वाले बंदियों की आवश्यकता भी पूरी करते हैं, परंतु उस बंदी गृह में दुख भी होता है ताकि बंदियों को सुधारा जा सके। तो उसी प्रकार भगवान ने इस जगत के सरकार के माध्यम से हम सबकी आवश्यकताओं को उपलब्ध किया है, परंतु साथ ही साथ अनेकों प्रकार के दुख भी दिए हैं ताकि हम सुधर सके। और जिस प्रकार जो बंदी सरकार के कानून अनुसार सब कुछ करने लगता है, उसे शीघ्र ही बंदी गृह से मुक्त कर दिया जाता है, उसी प्रकार जो लोग भगवान के कानूनों के अनुसार, शास्त्र में दिए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसको भी शीघ्र ही सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर दिया जाता है और वे पुनः
आध्यात्मिक जगत में वापस चले जाते हैं, जो कि हमारा खोया हुआ वास्तविक निवास स्थान है। तो चलिए अब हम देखते हैं कृष्ण का अचिंत्य संबंध इस भौतिक जगत से। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, हमारा भौतिक विज्ञान केवल कृष्ण के भौतिक शक्ति का अध्ययन कर रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइट यानी प्रकाश, साउंड या ध्वनि, ये सब वो विषय है जो वैज्ञानिक लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु उनको ये नहीं पता है कि ये भौतिक धातु, ये द्रव्य, ये पदार्थ आते कहां से है। वैदिक ग्रंथों में और विशेष करके श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये भौतिक शक्ति उस महाविष्णु के श्वास से प्रकट होती है जो कारण सागर में लेटे हुए हैं। उस श्वास से ध्वनि उत्पन्न होती है और फिर हवा आती है, अग्नि उत्पन्न होती है, फिर पानी या जल और अंत में पृथ्वी यानी पृथ्वी धातु। हम इस पृथ्वी लोक की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। धातु, सॉलिड, किस शब्द का कहां पर क्या अर्थ होता है यह जानना आवश्यक है। तो ये भूमि धातु यानी पृथ्वी धातु आखिरी स्थूल धातु है इस भौतिक विज्ञान में। इसी कारण कृष्ण कहते हैं कि यह भूमि जल से आती है, जल अग्नि से आता है, आग वायु से आती है और वायु खम से यानी आकाश से, और इस प्रकार सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न होता है। यही वैज्ञानिक अध्ययन है। परंतु जो नास्तिक लोग ये नहीं जानते कि इस सृष्टि के पीछे भगवान है, उनका ये विचार है कि सर्वप्रथम एक टुकड़ा था। क्या टुकड़ा था वो नहीं जानते हैं, कुछ था उतना ही कहा गया है उनके द्वारा। शायद ऐसा होगा, शायद उस प्रकार से होगा, उनके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है। परंतु वैदिक ग्रंथों में निश्चित रूप से बताया हुआ है कि ये भौतिक धातु आते कहां से हैं। वे सब कृष्ण से आते हैं। अब यदि हम इस भौतिक प्रकृति को मां के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनसे हमें अनाज, फल, धातु और रत्न प्राप्त होते हैं, तो कृष्ण पिता है। जैसे उन्होंने भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। किस प्रकार एक मां बिना पिता के संतान उत्पन्न कर सकती है। जो नेचुरलिस्ट लोग हैं, वो दावे के साथ कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। परंतु प्रश्न है किसकी प्रकृति। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण घोषणा करते हैं, भिन्ना में प्रकृतिर अष्टधा, कि ये 8 भौतिक पदार्थ मेरे हैं। ये केवल अकस्मात नहीं प्रकट हो जाते हैं जैसे मूर्ख लोग प्रस्ताव रखते हैं। ये 8 प्रकृति के धातु कृष्ण के हैं, उनके ही द्वारा ये प्रकट होते हैं और वे उनके ही निगरानी में कार्य करते हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति, भगवद्गीता 9:10, कि ये प्रकृति मेरे अध्यक्ष में कार्य करती है। और कृष्ण इन शक्तियों का अध्यक्ष कैसे करते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत दुख से भरपूर है। तो लोग कभी कभी विचार करते हैं कि ये सब गोलमाल क्या भगवान ने रचा है। यहां इतना अधिक मात्रा में लोभ है, ईर्ष्या है, प्रतियोगिता है, दुख है। कृष्णा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत के स्रोत है। क्योंकि एक बंदी ग्रह दुष्ट और चोरों को पालता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट विद्वान लोगों को उत्पन्न करता है। इसी कारण कोई ये नहीं सोच सकता कि बंदी ग्रह सरकार का नहीं है। उसी प्रकार भले ये भौतिक जगत पापी प्राणियों से भरपूर है और आध्यात्मिक जगत भगवान के हंस जैसे भक्तों से भरपूर है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों भगवान की शक्तियां नहीं है। एकदेश स्थितस यज्ञ ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्तिस तथेदम अखिलम जगत। ये विष्णु पुराण का श्लोक है और इसका अर्थ क्या है। आग एक जगह पर स्थित है, परंतु गर्मी और प्रकाश एक जगह से वितरण करती है। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान
अपनी अनन्य शक्तियों को विभिन्न प्रकार से वितरण करते हैं। जो भी कुछ हम देखते हैं वो केवल कृष्ण की शक्तियों का विस्तार है। जिस प्रकार से एक धनवान इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, भले ये सभी फैक्ट्रियां

केवल एक फोन लगाने से उनका सब कार्य होते रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो, ब्रह्म संहिता 5:37 में कहा है कि श्री कृष्ण अपने धाम में श्रीमती राधा के साथ आनंद मग्न रहते हैं मुरली बजाते हुए, और जो कुछ भी होता है वो उनकी शक्तियों के द्वारा होता है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, ये एक वैदिक कठन है कि कृष्ण की शक्तियां इतनी अच्छी तरह से कार्य करती है कि लगता है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आपो आप हो रहा है। जिस प्रकार यहां हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे फैक्स मशीन पर एक बटन दबाते हैं तो इसका परिणाम 5000 मील दूर कहीं पर दूसरा एक फैक्स मशीन पर आ जाता है, हमने ये वैज्ञानिक तरीका खोज निकाला है। तो उसी प्रकार कृष्ण के पास ये विविधैव बटन है, समझो, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, केवल उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ होने लगता है। बाइबल में भी कहा है कि भगवान ने इच्छा की, लेट दे बी क्रिएशन, सृष्टि को होने दे, एंड दे वॉज क्रिएशन, और सृष्टि हो गई। सृष्टि को होने दे और तुरंत कृष्ण की शक्ति कार्य में बदल जाती है, परंतु ये शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि वो कार्य तुरंत हो जाता है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, केवल कृष्ण की इच्छा से अनगिनत ब्रह्मांड रच जाते हैं, कई लाख योनियां और उनके निवास स्थान निर्मित हो जाते हैं, भूमि से अनाज उत्पन्न होने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, ऋतुएं बदलने लगती है, सूर्य और चंद्र समय पर उदय होते हैं, और बारिश से सभी प्राणियों को पुष्टि मिलती है। यह सब कुछ होता है तुरंत जैसे ही कृष्ण अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हम एक साधारण फूल का उदाहरण ले सकते हैं, केवल एक फूल का अध्ययन अच्छी तरह से करें कि कितनी बारीकी से इसका निर्माण हुआ है, उनमें कई नसें हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये किसने बनाया है इसे अध्ययन करना है। केवल प्रकृति का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। जब एक फूल खिलता है वो आपो आप नहीं हो जाता है। जैसे एक कैनवस पर हम कई वॉटर कलर फेंक सकते हैं, परंतु हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं, ये आशा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार से रंग को फेंकेंगे और एक बहुत ही सुंदर फूल का गुच्छा बन जाएगा। एक कलाकार की कला चाहिए, एक बड़े ही निपुण कलाकार के, जो एक कैनवस पर फूल को चित्र के रूप में प्रकाशित कर सके। तो उसी प्रकार कृष्णा ही वो परम कलाकार है इस सारी सृष्टि के पीछे, परंतु उनकी शक्तियां इतनी परफेक्ट है, इतनी अद्भुत है कि सब कुछ तुरंत हो जाता है। तो वैदिक शास्त्रों में जो भगवान सारी सृष्टि का स्रोत है उसका स्पष्ट विवरण मिलता है। वेद में हमें यह भी विस्तार मिलता है कि इस जगत का निर्माण भगवान ने कैसे किया था। भौतिक विज्ञान के द्वारा भी ये प्रयास किया गया है जानने के लिए कि इस सृष्टि का स्रोत क्या है, परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं किया गया है, केवल बहुत सारी कल्पना की गई है। परंतु ये बात सत्य है कि सब कुछ का एक एकमात्र स्रोत है। बाइबल जैसे दूसरे ग्रंथ भी जानकारी देते हैं कि भगवान ने कैसे इस जगत का निर्माण केवल अपनी इच्छा से किया, परंतु श्रीमद् भागवतम सृष्टि के विषय में बहुत ही गहरा विस्तार देते हैं, और यहां हम केवल कुछ भाग प्रस्तुत करेंगे आपको कुछ अनुमान देने के लिए। जिन लोगों को विस्तार पूर्वक सृष्टि के विषय में जानना हो उन्हें चाहिए कि वे श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवतम को विस्तार पूर्वक पढ़े, आपको सृष्टि की रचना का पूरा विवरण मिल जाएगा। अब भगवान का विज्ञान निरीक्षण करता है भगवान के संविधानिक स्तर को और उनकी विभिन्न शक्तियों को। नारद पंचरात्र एक सात्वत तंत्र है और उसमें इस प्राकृतिक जगत को प्रकृति कहा गया है, और ये प्रकृति भगवान की वो शक्ति है जो उनके विभिन्न पुरुष अवतार या विस्तारों में मिलती है। उसी नारद पंचरात्र का श्लोक इस प्रकार है, विष्णोस्तु त्रीणि

रूपाणि पुरुषख्यान्यथो विदुः। एकां तु महतः शास्त्री, द्वितीयं त्वन्दसां स्थितं, तृतीयं सर्वभूतास्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। अब इसका अर्थ क्या होता है? इस भौतिक जगत की सृष्टि के लिए कृष्णा के एक विस्तार से तीन विष्णु के विस्तार होते हैं। पहला विस्तार महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति को निर्माण करता है, जिन्हें महत तत्व कहते हैं। दूसरा विष्णु रूप, जिसे गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं, वे सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं ताकि प्रत्येक ब्रह्मांड में विभिन्न सृष्टि रची जाए। और तीसरा विष्णु है शिरोधकशायी विष्णु, जो सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में विस्तृत होते हैं, यहां तक कि परमाणु में भी या एटम में भी। जो कोई भी इन तीन विष्णु को जानता है, उसे भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब ये भौतिक जगत भगवान की एक शक्ति का अनित्य प्रकाशन है। इस भौतिक जगत के सभी कार्य भगवान श्री कृष्ण के इन तीन विष्णु विस्तारों के अध्यक्ष में होता है। इन तीन पुरुषों को पुरुष अवतार कहते हैं। आमतौर पर जो व्यक्ति भगवान के विज्ञान को नहीं जानता, वो ऐसा मान बैठता है कि यह भौतिक जगत सभी प्राणियों के मौज के लिए है, और यहां जो प्राणी है वही पुरुष है, और वही कर्ता है, और वही ईश्वर है, और वही इस भौतिक शक्ति के भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार ये नास्तिक निर्णय असत्य है। इस भौतिक जगत का मूल कारण कृष्ण है, और इसका समर्थन श्रीमद् भागवत करता है कि जिन पदार्थों से इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ है, वो सब भगवान की भिन्न शक्तियां हैं। यहां तक कि ब्रह्म ज्योति, जो कि निराकारवादियों का अंतिम लक्ष्य है, वो भी आध्यात्मिक आकाश में प्रकाशित आध्यात्मिक शक्ति है। उस ब्रह्म ज्योति में कोई भी आध्यात्मिक विभिन्नताएं नहीं है, जिस प्रकार वैकुंठ लोक में होती है। और ये निराकारवादी इस ब्रह्म ज्योति को ही अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं। और परमात्मा का विस्तार भी अनित्य है, परंतु वो शिरोधकशायी विष्णु का सर्वव्यापी विभाग है। ये परमात्मा प्रकाशन आध्यात्मिक जगत में शाश्वत नहीं है। इसी कारण वास्तविक परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। वे संपूर्ण शक्तिमान व्यक्ति है, और उनमें विभिन्न अंतरंग शक्तियां हैं। अब चलिए हम इसे और बारीकी से देखें। सर्वप्रथम कारण दुख साई विष्णु को, जिनसे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे कारण सागर में लेटे हुए होते हैं। कारण का अर्थ है जैसे किसी चीज का कारण, और उदक का अर्थ है जल। तो कारण दक का अर्थ है कारण जल में। वे संपूर्ण भौतिक शक्ति, जिसे महत्व तत्व कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं, जो निर्मित है समय, कारण, परिणाम, खम, मन, स्थूल धातु, सूक्ष्म धातु, प्रकृति के गुण, इंद्रियां और इंद्रियों के स्रोत। याद रखे कि जब ऐसे जीवात्मा होते हैं जो भगवान से अलग रहकर भौतिक प्रकृति पर अपना हक जमाना चाहते हैं, तब उनके लिए ये भौतिक जगत निर्मित होता है। इस जगत के पदार्थ नित्य है, परंतु इन पदार्थों से जो रूप निर्मित होते हैं वो अनित्य होते हैं। इन प्राणियों के लिए महत तत्व, जो कि स्पष्ट आकाश में बादल के समान होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक आकाश में एक कोने में ये बादल की तरह छा जाता है। इस महत तत्व में भौतिक रचना के लिए सभी तत्व पदार्थ मौजूद रहते हैं। भौतिक अहंकार या मिथ्या अहंकार महत तत्व से उत्पन्न होता है, जिनमें तीन प्रकार की क्रिया शक्ति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इन्हीं से 24 भौतिक तत्व पदार्थ उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु यानी कारणोदकशायी विष्णु केवल अपनी दृष्टि डालते हैं, और उसी से सभी विरोधी जीवों को वो उठाकर
भौतिक आकाश में प्रविष्ट कर देते हैं। इसी कारण इस हेतु उपनिषदों में भगवान की महिमा का गुणगान होता है कि एकमात्र उनकी दृष्टि से वे भौतिक प्रकृति में विरोधी जीवों को डाल देते हैं और इस प्रकार भौतिक प्रकृति को कार्यशील बना देते हैं। कभी काल जब एक विशेष अतिथि या मेहमान किसी के घर पर आते हैं, तब जो परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, वो किचन में केवल अपनी पत्नी को अपनी आंखों से देखता है और केवल वही संकेत से उनकी पत्नी ये तुरंत समझ जाती है कि उसे मेहमानों के लिए कुछ खाने के लिए तैयार करना है। बिल्कुल उसी प्रकार भौतिक प्रकृति का व्यक्तित्व रूप दुर्गा है और महाविष्णु की दृष्टि को शंभु कहते हैं। तो भौतिक प्रकृति भगवान की दृष्टि से कार्यशील बन जाती है। जितने भी ब्रह्मांड या यूनिवर्सेस है, वे महाविष्णु के स्वरूप के रोए में से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में से पसीने के बूंद निकलती है, करोड़ों की संख्या में ऐसे ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते हैं बिखरे हुए। जिस प्रकार करोड़ों सरसों के दाने किसी एक बड़ी बोरी में रखी जाती है, ये सभी ब्रह्मांड केवल तब तक रहते हैं जब तक महाविष्णु का एक सांस चलता है। ब्रह्म संहिता के 5.48 में कहा गया है, यस्यैक निःश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंदनाथ। कि मैं उस गोविंद भगवान को सर्व कारण के कारण को सादर प्रणाम करता हूं और पूजता हूं, जिनका एक विस्तार स्वरूप महाविष्णु है, जो अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी है। और इन सभी ब्रह्मांडों में जो ब्रह्मा रहते हैं, उनके जीवन की अवधि उस महाविष्णु की केवल एक सांस के बराबर है। तो इस प्रकार जब महाविष्णु सांस बाहर निकालते हैं और सांस अंदर लेते हैं, तब ब्रह्मा का उतने समय में जीवन संपूर्ण समाप्त हो जाता है और इसकी गिनती है लगभग 311 trillion 40 billion वर्ष। ये महाविष्णु की केवल एक सांस है। लोग अक्सर कहा करते हैं कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, परंतु ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने बड़े हैं, कितने महान है, कि उनकी केवल एक सांस 311 trillion 40 billion वर्ष तक चलती है और उनका शरीर इतना विशाल है कि उनके रोएं के अंदर से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, यूनिवर्सेस। और ये महाविष्णु का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का केवल एक अंश अवतार है। तो अभी तक आपने पहले पुरुष के विषय में सुना, कारणोदकशायी विष्णु, और अब दूसरा पुरुष है गर्भोदकशायी विष्णु। ये विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अपने ही पसीने से आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं। इस पसीने के जल से जो ये विशाल सागर उत्पन्न होता है, उसे गर्भोदक सागर कहते हैं। इसी सागर पर वे शेषनाग अवतार पर लेटते हैं। आधा ब्रह्मांड गर्भोदक सागर से भरा हुआ होता है और ऊपरी हिस्सा आधा खाली होता है। गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से 1000 सूर्य के भांति तेजस्वी कमल का फूल प्रकट होता है और इस कमल के फूल के ऊपर इस ब्रह्मांड के सबसे पहले रचनाकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये कमल का फूल ब्रह्मांड का विराट रूप है या भगवान का विराट रूप इस भौतिक जगत में। प्रलय के समय पर ये कमल का फूल उनके उदर में समाविष्ट हो जाता है और सृष्टि के समय पर ये प्रकट होता है। इसका कारण ही गर्भोदकशायी विष्णु है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और इसी रूप में सभी जीव जो इस भौतिक जगत में बद्ध होते हैं, उनके समाविष्ट कर्म होते हैं और उनमें से सर्वप्रथम यानी ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के कंट्रोलर या ईश्वर, उसकी उत्पत्ति होती है कमल के फूल के ऊपर। ये सर्वप्रथम जन्म लेने वाला प्राणी
अन्य और की तरह नहीं होता है, क्योंकि इनके पास कोई भौतिक पिता नहीं है। इसी कारण इसे स्वयंभू कहा गया है। प्रलय के समय पर ये नारायण के साथ विश्राम करते हैं, और जब दूसरी सृष्टि होती है तो उसका जन्म इसी प्रकार होता है। अब कमल के फूल पर जन्मे ब्रह्मा इस जगत को नहीं देख पाते हैं। इस संसार के कमल पर स्थित होने के बावजूद भी उन्होंने आकाश की भी परिक्रमा लगाई, सभी दिशाओं में अपनी आंखों को दौड़ाई, चारों दिशाओं में देखते हुए उनके चार मुख प्रकट हुए। अब हमारे सीमित अनुभव में ऐसे कोई प्राणी का उदाहरण नहीं है, और इसी कारण कई लोग ऐसे हैं जिनके सीमित ज्ञान और अनुभव के कारण इसे काल्पनिक मानकर इसका तिरस्कार कर देते हैं। 200 वर्ष पूर्व यदि हम फैक्स मशीन की बात किसी से करते तो वो भी विश्वास नहीं करते। हमें ये समझना होता है कि वेद हमारे सीमित अनुभव से सीमित नहीं है। पहले हम इस तर्क पर काफी कुछ बोल चुके हैं, इसी कारण हम और विस्तार पर इसमें नहीं जाएंगे। फिर भी अपनी अज्ञानता में ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं कौन हूं जो इस कमल के फूल के ऊपर स्थित हूं? ये कहां से उत्पन्न हुआ है? कुछ ना कुछ तो नीचे होगा, और जहां से ये कमल उत्पन्न हुआ है वो तो पानी के अंदर ही होगा। तो ऐसा विचार करते हुए वे कमल के फूल के डंडे में अंदर प्रवेश किए, और विष्णु के नाभि के निकट पहुंचते हुए भी उसको मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार जब उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने संशोधन करना बंद किया और फिर से कमल के फूल के ऊपर आ गए। सब प्रकार के लक्ष्य को वश में करते हुए उन्होंने अपना मन भगवान पर एकाग्र किया। समाधि का अर्थ है जो सब कुछ के परम कारण है उस पर मन को ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना। भले उनको पता भी ना हो कि वो परम कारण का स्वभाव क्या है, क्या वो व्यक्ति है या अव्यक्त है या किसी एक स्थान पर स्थित है। इसी कारण उस परम तत्व पर मन से ध्यान करना उनके प्रति एक प्रकार की भक्ति ही कहलाती है। अपने व्यक्तिगत इंद्रियों के प्रयास बंद करके उस परम कारण पर ध्यान करना शरणागति का ही लक्षण है, और जहां आत्मसमर्पण उपस्थित है वही भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का निश्चित लक्षण है। प्रत्येक जीव को चाहिए कि वो भगवान की सेवा में भक्ति पूर्वक लगे, यदि वो अपने जीवन के कारण को सचमुच में समझना चाहे। तो ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक ध्यान लगाया और उसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप वे भगवान का दर्शन कर सके, जिन्हें वो इससे पहले इतना प्रयास करते हुए भी ना देख सके। तो 100 वर्षों के ध्यान के बाद वे परम कारण के कारणों को समझ पाए, और फिर उन्होंने ब्रह्म संहिता को रचा जो आज भी अधिकारियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिनमें वो गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि मैं उस गोविंद आदि पुरुष को भजता हूं। इसी कारण एक व्यक्ति को भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है इससे पहले के वो उनकी सेवा कर सके या उन्हें सचमुच में जान सके। तो ब्रह्मा जी देख सके कि उस जल के ऊपर एक विशाल सफेद बिस्तर के समान शेषनाग का शरीर था जिस पर स्वयं भगवान लेटे हुए थे, और वो सारा वातावरण जगमगा रहा था शेषनाग के अनेकों सिर पर मणि के किरण के द्वारा। उस ब्रह्मांड के नीचे भाग का अंधकार इसी प्रकार से दूर हो रहा था। इसके आगे का विवरण हम अगले सप्ते आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आज के इस विषय पर यदि किसी भी श्रोतागणों को कोई भी प्रश्न या टिप्पणी हो तो आप उसे हमारे पास ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedvani@gmail.com। याद रहे वेदवाणी vedvani@gmail.com। आज इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब सभी की सेवा में
कुछ भक्ति में भजन।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जॉनी जैन। उम्मीद है जी आपकी ये सुबह शानदार शुरुआत के साथ हो रही है और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। अगले कुछ टाइम तक यानी कि एक घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे, जहां पर होगी भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की बड़ी खबरें, एंटरटेनमेंट गॉसिप, स्पोर्ट्स अपडेट, मौसम का हाल और आखिर में एक खूबसूरत सा मोटिवेशन मैसेज आपको जरूर सुनाया जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का ये सफर। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए कुछ हेडलाइंस जान लेते हैं। भारत के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में सर्द मौसम का असर जारी है, लोगों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की गई है। वैश्विक बाजारों में आर्थिक गतिविधियों पर निवेशकों की नजर बनाई हुई है। वहीं पर खेल जगत में क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी चर्चाएं तेज होती नजर आ रही है। मनोरंजन की दुनिया की बात करें तो मनोरंजन की दुनिया में नए प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक टूर जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद इंडिया की कुछ न्यूज, उसके बाद जानेंगे ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरें। आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं चाने का सफर। तो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर नजर डालते हैं भारत के कुछ समाचारों में। तो दोस्तों, कई राज्यों में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने अलर्ट मोड किया हुआ है और डिजिटल सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में नए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर किसानों के लिए मॉनसून जो है वो राहत की खबरें सामने आ रही है। पर्यटन स्थलों पर जो मॉनसून है उसका आनंद लेने वालों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जानेंगे थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया की कुछ अपडेट्स। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरें। दोस्तों, ब्रिस्बेन में ठंडी ठंडी हवा जो है उसमें मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हल्की सी धूप के साथ मौसम जो है और भी सुहावना नजर आ रहा है। और आज जो है ब्रिस्बेन में ठंडी ठंडी हवा चलने की, साथ ही थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं पर क्वींसलैंड की बात करें तो क्वींसलैंड में सड़क सुरक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय समुदाय के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी शुरू हो रही है। वहीं पर स्थानीय परिषदों की ओर से जो है पर्यावरण संरक्षण अभियान जारी हुआ है। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद दुनिया की कुछ अहम खबरों पर यानी कुछ हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो आप सभी सुनकर आए हैं ये खूबसूरत सा गीत और आशा करती हूँ ये सफर आप सभी का बहुत ही सुहावना बन रहा होगा। तो आइए फिर इंटरनेशनल न्यूज की ओर जरा नजर डालते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर कई देशों के बीच बैठक जो है वो जारी है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है वो बढ़ रहा है। नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया भर में निवेश जारी है। वहीं पर कई देशों में पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये सब जानी हमने बहुत सारी हेडलाइंस इंटरनेशनल नेशनल, और आशा करती हूँ ये हेडलाइंस जान के आप सभी को कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त जरूर हुई होगी। जाने की थोड़ी ही देर बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? एंजॉय कर रहे हैं इन ट्रैक्स को? और आइए अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट बज की। तो दोस्तों, बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट का इंतजार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा है। साउथ इंडस्ट्री की आने वाली फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह जो है वो बना हुआ है। वहीं पर हॉलीवुड में नए म्यूजिक कॉन्सर्ट और फिल्म प्रोजेक्ट्स की चर्चा बहुत ही जोरों शोरों में है। सोशल मीडिया पर कई स्टार्स के नए लुक और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो कि लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम स्पोर्ट्स अपडेट की बात करें तो दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की नजर आने वाली सीरीज पर है। फुटबॉल क्लब अपने नए सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। टेनिस खिलाड़ियों ने आगामी टूर्नामेंट के लिए अभ्यास तेज किया हुआ है। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन चर्चा में है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आशा करती हूँ इन ट्रैक्स को सुनकर आप सभी का मनोरंजन हो रहा होगा। और दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि लास्ट में मैं आप सभी से कुछ ना कुछ थॉट जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर रोज मेहनत की जाए ना तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। तो इन पूरा सबका अगर हम कंक्लूजन निकाला जाए तो वो है मेहनत। हमेशा इंसान को मेहनत करते रहनी चाहिए, तभी कामयाबी हासिल होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने हमारे साथ बिताया ये एक घंटा पसंद किया होगा। अगर आप किसी खास गाने की फरमाइश भी करना चाहते हैं या फिर अपना संदेश भेजना चाहते हैं तो हमें जरूर आप बता सकते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त चांदनी, आप सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमेशा गुनगुनाते भी रहिए। कल फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई सुबह और नई खबरों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कनिष्क नारायण बने ब्रिटेन के पहले AI मंत्री। ब्रिटेन की नई सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए पहला AI मंत्री नियुक्त किया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने भारतीय मूल के सांसद कनिष्क नारायण को AI मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया है। ये पहला मौका है जब किसी कैबिनेट में AI मंत्री की नियुक्ति हुई है। जो चीज लग रही थी कचरा, वही बन गई समुद्री जीवन को फिर से जीवित करने का जरूरी साधन। जो चीजें कचरा लग रही थी वही फ्लोरिडा के तट पर समुद्री जीवन को फिर से जीवित करने के लिए एक जरूरी साधन बन गई है। दरअसल 2007 और 2024 के बीच फ्लोरिडा ने खराब हो चुके समुद्री आवासों को ठीक करने के लिए मेक्सिको की खाड़ी में 5 लाख टन से ज्यादा रिसाइकिल की गई ऑयस्टर और क्लैम की सीपियां डाली थी। ये सीपियां सीधे समुद्र से नहीं आई थी, बल्कि इन्हें सी फूड रेस्टोरेंट और सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट से इकट्ठा किया गया था। अब यही रिसाइकिल की गई सीपियां समुद्र में डालकर समुद्री जीवन को पुनर्जीवित किया गया है। ये अब अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। पीएम आवास के बाहर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी हटाए गए, राहुल अखिलेश को पुलिस ने किया डिटेन। नीट पेपर लीक के विरोध में एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के आह्वान पर जंतर मंतर पर एक महीने से चल रहा प्रदर्शन उग्र हो गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संसद में भी मार्च जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस नेता भी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और करीब 4 घंटे के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी को जबरन हटाया और डिटेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दिए 2 ऑप्शन। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर देश की शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सोनम रघुवंशी को 2 विकल्प दिए। अदालत ने कहा कि या तो आप सरेंडर कर दें या फिर मामले के गुण दोष पर विचार करके आदेश देंगे। आइए जुड़ते हैं अब खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। जस्टिन लैंगर इंग्लैंड के टेस्ट कोच की रेस में सबसे आगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जस्टिन लैंगर इंग्लैंड टेस्ट टीम के नए हेड कोच की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ इस रेस का हिस्सा नहीं है। वहीं एंडी फ्लावर ने खुद को इस रेस से अलग कर लिया है। लैंगर IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच हैं। अगर वो इस पद के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें IPL में कोचिंग छोड़नी पड़ सकती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: कहना आसान है लेकिन आगे बढ़ेंगे. एक गाना मैं चुना हूं. इट्स अ फ्यूजन. इट्स अ लैटिन और इंडियन फ्यूजन.
1: अरे आई वाज गोना इज दैट शकीरा एंड एआर रहमान बिकॉज
0: आई एम गोइंग टू प्ले दैट नाउ.
1: दैट इज
0: एंड होपफुली आवर लिसनर्स विल love this
1: that
0: song.
1: Is weird because that's exactly what I was going to play right now.
0: Yeah, A.R. Rahman and Shakira.
1: Okay, perfect. How funny is that?

0: Shakira and A.R. Rahman, Desert Beats the Ocean, epic Latin and Indian fusion song of 2026. और देखिए दोस्तों, हमारा जो इंडियन कल्चर, गाना और कल्चर और आर्ट्स इज सो कलरफुल दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया. इंडिया एक दिन छाएगा सभी जगह और छा रहा है. यू नो दैट इट्स गोइंग टू हैपन. और जी हाँ, जो हमारा कल्चर, हमारा सॉन्ग्स, हमारा क्या बोलते हैं, जो आर्ट्स, जैसे मैंने कहा, इज सो गुड एंड स्ट्रॉन्ग, सो कलरफुल, एंड पीपल आर एंजॉइंग इट. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. और रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, इस समय ठीक 8 बज गया है और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी. आप सभी का एक बार फिर से हम वेलकम कर रहे हैं. और आपको बतला दूं, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम रहेगा, और 3 बजे से दिव्या के साथ. तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा. और क्या, 22, आज 22 तारीख है ना. और जी हाँ, और राहत फतेह अली खां का शो देखेंगे आप लोग.
1: इट्स ऑल सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट,
0: सोल्ड आउट. या एंड
1: दैट्स टुमारो.
0: आई होप यू गाइस गो एंड हैव अ गुड टाइम इन द मीट एंड ग्रीट
1: सेशन.
0: एंड या सो या मैन, इट्स ऑल राइट.
1: राइट,
0: यू विन सम एंड यू लूज सम.
1: यप, यू कांट हैव इट ऑल. Simple as that.
0: Oh, we can't have it all. Yep. Okay.
1: Alrighty.

0: Alrighty.
1: Okay. You played the song I just wanted to listen to. Thank you very much. Senorita. और दोस्तों 8:04 हो गया. अभी मैंने कहा था कि 8:04 हो गया. टाइम इज फ्लाइंग. और अगर अभी अनफॉर्चुनेटली कॉल लेने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय. खैर आई विल मेक इट वेयर पीपल विल बी एबल टू कॉल मी. ओके
0: Okay.
1: ऑलराइट ये गाना मैंने कभी सुना नहीं जो मैं बजाने जा रहा हूँ. आज वेंसडे है. आज थोड़ा मूड कुछ इधर उधर रहता है
0: लाइट
1: ना. थोड़ा
0: लाइट
1: सा
0: मूड टुडे.
1: पागलपन होता है कुछ.
0: हाँ.
1: ओके लेट्स लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग
0: ओके
1: एंड होपफुली यू कैन हियर द लिरिक्स.
0: ओके
2: सुना रे.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास

0: 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Okay, I hope you enjoyed the previous song and the break you had.
5: I did. And thank you for all the calls. And people are calling me saying, hello, when you coming back? You know, I think I'm being missed by my friends.
4: Of course you are. You're being missed by me too. What do you mean?
5: Oh, well, life is such.
4: Yeah, okay, I guess we're not supposed to get too attached, isn't it? We've got to detach.
5: Well, attachment should be out of the way slowly now.
4: Yes,
5: you know, don't they say
4: that's
5: that?
4: True. Don't get attached.
5: But don't. Just take every day at a day. Don't worry about all those things. You know. Just enjoy life.
4: Take each day as it comes. Live each day as it comes.
5: We don't own this life, do we?
4: No. Okay, it's Wednesday. Hey, we're not going to get
5: you don't own
4: what's the word? Philosophical or anything. We're going to just enjoy the morning. How's that? It's Wednesday.
5: Well, yeah.
4: Okay. Here we go.
5: Why do you want to get philosophical? Why?
4: No, it's Wednesday.
5: So?

0: अगर आपका नाम रमेश है तो ये गाना आपके लिए था दोस्तों. पहले था बेलना और अब जूता. और जो ये शूज है ना, ये लेडीज के पास एक पेयर नहीं होता है. आई थिंक दे हैव अ कलेक्शन ऑफ शूज.
1: लेडीज लव
0: शूज. मेबी द शूज शुड बी आउटलॉड टू. आई डोंट नो
1: व्हाट वुड बी बी लेफ्ट विद. आई टोल्ड यू अर्लियर एनीथिंग कैन बी अ वेपन. आई टोल्ड यू दैट अर्लियर.
0: आई नो आई नो. यप. ऑलराइट. A bad day gets even worse. In Louisiana, a man allegedly fled from police on foot, only to run into an alligator, which bit him. He survived, was treated for his injuries, and was taken into custody. That's certainly one way to end a getaway attempt. Out of the pot into the fire.
1: Hey. Oh, man. Yeah. Hey. The things you can find, eh?
0: या ओके. ऑलराइट, चलते आगे बढ़ते हैं. और 17 मिनट रह गया है 9 बजने में इस प्रोग्राम में. और यहाँ पर
1: टाइम्स मार्चिंग ऑन.
0: यहाँ पर काफी धूप है.
1: आई सी टाइम्स मार्चिंग ऑन. वाओ.
0: बट वी आर हैविंग फन राइट.
1: ओके, लेट्स लेट्स कीप

0: ओके टाइम फॉर वन ओल्ड सॉन्ग राइट, एक पुराना गाना तो होना चाहिए. तो चलिए दोस्तों इस गीत को हम सुनते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है.
1: जब हमें जाते

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: ओके ओके ओके, एक पुराना गाना तो सुनने को मिला दोस्तों आज, और अब आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ से तैयारी है निकलने को, और आई एम गोइंग टू ड्राइव फॉर अबाउट, आज मुझे 2 घंटा में चलाऊंगा गाड़ी।
2: 2 hours today?
1: So, 2 hours, I think 2 hours, I'm not sure, probably 2 hours, see. And yeah, so...
2: So what time are you planning to start your journey?
1: I am having a beautiful, beautiful weather. It's sunny out here now. Is it sunny out there? Is it sun out there? Sun's out?
2: Yeah, I think so. I need to go outside to check. You want me to go and check and come back?
1: Oh, sorry. I'm sure we have the same sun, don't we?
2: Of course.
1: It's Wednesday. It's Wednesday. Yeah. So, anyway. So, dosto, ab yahan se jaane ka वक्त हो रहा है और प्रोग्राम से कल हम जरूर मिलेंगे।
2: We will see you
1: कल
2: tomorrow?
1: कुछ पुराने गीत होंगे
2: जी।
1: पुराने गीत होंगे और क्या, बस आप सुनते रहिए रेडियो बिजवानी।
2: Okay.
1: हमारा साथ देते रहे दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वी रियली जनरली मीन दैट।
2: यस
1: वी सी देयर वी बिकम सो हैप्पी, ओह इट मेक्स आवर डे। Anyway, Amita.
2: Namaste and have a beautiful day.
1: Namaste
2: day.
1: And you can conclude
2: safe,
1: while I wind up.
2: Safe travels.
1: Yep.
2: And we
1: thank
2: will
1: you very much.
2: See you tomorrow. Namaste, everyone. Have an absolutely
1: namaste,
2: beautiful,
1: everyone.
2: Beautiful
1: see you.
2: Beautiful
1: take
2: day.
1: Care.
2: Namaste.
1: Okay. And don't get mad at the dogs, okay?

सत्यापन सुन रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। दोस्तों सताक्षी आपके साथ है और लेकर आई है आपके लिए एक बार फिर से सजाकर आपका अपना इट हैपन्स। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इट हैपन्स में आप सब मेरे साथ आ चुके हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम और आप मिलकर बहुत सारी बातें करने के लिए रेडी हैं, लेकिन क्या करें उनका जो अभी भी सो रहे हैं। तो सोने वालों प्लीज जाग जाओ, उठ जाओ और शुरुआत करो आज के दिन की। जिसका इंतजार था ना कल आपको कि कल आएगा तो ये करेंगे, तो आ गया ना कल, अब क्या फिर से कल पर डालना है? नहीं ना। तो चलिए उठिए और आज के दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और आपकी जिंदगी में बहुत सारी खास चीजें लेकर आया है। लेकिन अगर आप सोते रहेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो सताक्षी एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग कहती है और जब तक आप उठते हैं मैं आपके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी 1701 AM, सुनते रहिए सताक्षी के साथ गुड मॉर्निंग वाला शो, आपका अपना ब्रेकफास्ट show it happens.

इसके पहले कि शो में आगे बढ़ूं, विश करूंगी उनको जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है और जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। जी हाँ, हमारे प्यारे लिसनर्स और हमारे वो लिसनर्स जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी, उन सबको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। एक दूसरे का साथ यूं ही बनाए रखिएगा, एक दूसरे के साथ यूं ही बने रहिएगा और जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ते रहिएगा। वो सभी जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है, जी हाँ जन्मदिन है, आज के दिन वो इस दुनिया में आए थे, उन सबको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। आप की पूरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, सताक्षी और रेडियो ब्रसवानी की यही दुआ है। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिनको आज के दिन से कुछ उम्मीदें हैं या जो कुछ आज खास करने वाले हैं, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। दुआ है हमारी कि आज का दिन आप सबकी लाइफ में एक नया पॉजिटिव चेंज लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस अगले ट्रैक को। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रसवानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो वर्सवानी 1701 एम पर. यू नो, जिसने अपना सफर जीरो से शुरू किया है ना, वो जानता है मेहनत की अहमियत क्या होती है. और वहीं जिसे सब कुछ रखा रखाया मिल गया है, सब सेटअप तैयार मिल गया है, उसे भला क्या पता कि मेहनत की अहमियत क्या होती है. और शायद इसीलिए तो कहते हैं कि भूखे की जो हालत है वो सिर्फ भूखा जानता है. जिसका पेट भरा हो उसे क्या पता कि भूख क्या होती है, कैसी होती है ना. और जब आपने वो भूख झेली है और उस पेट के साथ, भूखे पेट के साथ आप काफी देर रहे हैं, देन यू रियलाइज कि अगर कोई इंसान भूखा है तो उसे कैसा फील हो रहा होगा. सोचने वाली बात है. आइए फिलहाल ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए जिंदगी को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा लाइट लेते हैं और एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक. सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर मुझे समझ नहीं आता कि हम इस बात को समझने में इतना वक्त क्यों लगा देते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है। हम इसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम हमेशा आने वाले कल की चिंता में आज को जीना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि जब वो बड़ी सी गाड़ी आ जाएगी, जब वो बड़ा प्रमोशन मिल जाएगा, तब हम खुश हो लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी इस सफर का नाम है। तो आज जब आप किसी से मिले तो स्माइल के साथ मिले। कोई आपके साथ रूखा बर्ताव करे भी तो सोचिए कि शायद हो सकता है आज उसका दिन अच्छा नहीं हो, और उसे माफ करके आगे बढ़ जाइए। जिंदगी को थोड़ा सा लाइट लीजिए और लोगों को भी। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है. इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
10: वेलकम बैक रेडियो ब्रिसवानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस. आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर. जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी. और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं बॉलीवुड के. वो गाने हैं हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिसवानी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक. ये पहला ट्रैक है आपके लिए.

इन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

कई बार आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम भी कई बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सेंटेंस दोहराते हैं, या वो लोग, वो एफर्ट्स जिनको करके हम थक जाते हैं, जिनके साथ हम साथ निभा निभा के थक जाते हैं, फिर हम ठान लेते हैं कि अब हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वाकई हमें फर्क नहीं पड़ता है? एक्चुअली ये एक ऐसा झूठ है जिसे हम सब शायद रोज बोलते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच तो ये है कि हमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जब जिस रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हो वो रिश्ता आपसे दूर हो जाता है, या वो रिश्ता आपकी जगह किसी और का हो जाता है। फर्क पड़ता है एक इंसान जो आपके लिए आपकी दुनिया रहा है, वो इंसान जब आपसे अजनबियों जैसा बिहेव करता है तो फर्क पड़ता है। जब बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भी आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो फर्क पड़ता है। लाइफ में कई फेजेस ऐसे आते हैं जहां बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वो झूठ की चादर कि फर्क नहीं पड़ता ये ओढ़कर हमें लगता है कि हम खुद को तसल्ली दे लेंगे, लेकिन जैसे ही आप खुद से मिलते हैं आपको फर्क पड़ता है। तो हाँ, कभी भी झूठा दिलासा मत दीजिए खुद को कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

वेलकम बैक टू हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके मॉर्निंग वाले ब्रेकफास्ट शो को। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं। यू नो, जब तक आप कामयाब नहीं होते आपकी काबिलियत पर कोई भरोसा नहीं करता, फिर चाहे आपने अपने पैशन के साथ कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, लोगों को एतबार नहीं होता कि ये बंदा जो है ये लाइफ में कुछ कर सकता है। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आप सक्सेसफुल होते हैं उसके बाद ही जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो आपके लिए तालियां बजाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप सोचें कि पहले तालियां बजाई जाएं कि भाई तुम बहुत सक्सेसफुल होगे, तो होता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग उसी को तारीफ देते हैं, उसी की बड़ाई करते हैं जो दिखता है। जो दिखता नहीं है लोग उसे पहचानते भी नहीं है। फिर आप चाहे छुपकर कितनी भी मेहनत कर रहे हो या लोगों के सामने भी कर रहे हो, उन्हें लगेगा कि बेकार है ये मेहनत, इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो हाँ, अपनी सफलता का वेट कीजिए, अपने सक्सेसफुल होने का इंतजार कीजिए और शांति से पेशेंसफुली अपना काम करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इट हैपेंस। जी हाँ, सताक्षी के साथ इसी शो को आप इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग की बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा मजा। वैसे जिंदगी ना हमें अपने रूल्स के हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर देती है। पहले जब मैं छोटी तो नहीं थी एग्जैक्टली, जब मैं कॉलेज में थी, हाँ, तो मैं एक चीज़ सोचा करती थी कि यार अपनी जिंदगी को ना मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी और इसका हर एक काम मैं अपने हिसाब से करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लाइफ ने, मतलब मैंने लाइफ को लिखा अपनी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से की, लेकिन हर बार नहीं कर पाई। कई बार लाइफ ने मेरी प्लानिंग मुझसे